0: यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम लिखाया गया।
1: कहाँ पे?
0: फैजाबाद में।
1: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
0: किसी स्कूल में
1: जी।
0: तो वहाँ से पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो, बस इतना ही जानता हूँ।
1: राम मंदिर में काम भी करते थे वो?
0: इसका हमें कुछ नहीं मालूम था।
1: तो उनका नाम बाबा कैसे आया फिर?
0: कुछ बता नहीं सकते।
1: कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार अनकल्प से आपकी?
0: हमारी बात हुई थी आखिरी 30 तारीख।
1: 30 तारीख को
0: जब हमारा यहाँ भंडारा था।
1: अच्छा अच्छा, यहाँ कथा यही हुआ था?
0: कथा यहीं हुई।
1: काफी लोग भी आए थे? आपने ही भागवत सुना था?
0: हमने।
1: जी जी जी जी।
2: आप भाई हैं? आपका क्या नाम
3: बताइए?
2: नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
3: वो सब फंसाया गया और क्या है।
2: हाँ,
3: फंसाया गया और क्या है।
2: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे?
3: मनीष को अभी 1 महीना काम करे हुआ है।
2: बस
3: बस।
2: आप तो टिन्नू के रिश्तेदार है ना?
3: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं, बताइए।
2: अच्छा, बड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है?
4: भाई के बेटे।
2: अच्छा अच्छा, तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए। और क्या वहाँ काम क्या था?
3: काम काउंटिंग का ही था, 1 ही महीना हुआ था। बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ देखे, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं।
2: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
3: अरे वहाँ पे बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे
2: बैंक की तरफ से।
3: जी।
2: टिनू की भूमिका नहीं थी?
3: नहीं, इसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी।
2: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
3: मनीष की उम्र अभी 20 साल।
2: 20 बस?
3: बस।
2: अच्छा, तो इसमें सिर्फ 1 महीना हुआ? क्योंकि
3: सिर्फ 1 महीना हुआ, सिर्फ 1 महीना, यही केवल जो है मई में काम किया बस।
2: मई में
3: बस?
2: अच्छा, उसके पहले वो?
3: उसके पहले कुछ नहीं करता था।
2: पढ़ाई?
3: पढ़ाई करते थे।
2: कहाँ?
3: अभी भी उसकी पढ़ाई चल रही है साकेत से।
2: साकेत से? क्या कर रहा है?
3: बीए।
2: बीए। ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं।
3: हाँ, ऐसा कुछ नहीं है।
2: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब
3: ये सब फंसाया गया और क्या भैया।
5: And the Ram Mandir donation theft row has now snowballed into a full-blown political slugfest. After Akhilesh Yadav questioned the motto of the BJP, he has stated that donation first is the motto of the Saffron Party and not nation first. He further took a dig and said that neither religion nor shame in BJP. Yogi Adityanath accused the Samajwadi Party of firing on Ram devotees during its tenure, said the party's politics revolves around appeasement, asked Akhilesh Yadav to seek atonement by visiting Ram Lalla, and asserted that Ayodhya's identity does not need the approval of the Samajwadi Party. Opposition, meanwhile, continues to demand a Supreme Court monitored probe. The Ram Temple Trust has hit back, alleging that anti-social elements are spreading false rumors.
6: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
7: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। इनके लिए नेशन

0: फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़। इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
1: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो आप लोग के राम हो गया, बताइए हो पाएंगे? जो श्री राम की को जगा दिया, जो हमारे पूजनीय है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं, हम सब की कोई अहमियत नहीं है संविधान की। क्योंकि जिस श्रीराम जी का इन लोगों ने सहारा दिया उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया, जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए उन्हीं को धोखा देने का हमने काम किया है।
2: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ना छोड़े योगी, ना छोड़े मोदी किसी को।
3: निकेतन अग्रवाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग अ ड्रामेटिक टर्न। पुणे पुलिस टुक बोथ द अक्यूज सिया गोयल एंड चेतन चौधरी टू लोहागढ़ फोर्ट टू रिक्रिएट द क्राइम सीन। The police further claimed that the duo had visited the fort before the murder to rehearse the crime and prepare statements to mislead the investigators. Investigators also claimed that the first murder was an attempt. It was planned on the 14th of June. The accused allegedly searched online for murder methods and planned disguises and tried to delete chats after the incident. Now, according to sources, investigators are also probing a possible motive and whether it was Chetan who wanted 3 years to build his career with the alleged plan to delay Sia's marriage. Police have also seized Chetan's motorcycle, hoodie and headphones for forensic examination.
4: Been recreated. The accused has taken us to the places, like how it all happened, whose role was what in this whole incident, that's all.
5: वह सिया को हम सिया ने बताया जैसे हम उसको वहां पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया।
6: और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था?
5: उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया।
7: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
8: मुझे जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए। थैंक्स सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमको सपोर्ट दिया। सब बहुत अच्छा लगा हमको, सोसाइटी ने सपोर्ट दिया, कैनल किया उन लोगों ने, थैंक्स यू।
3: Slipping into a very short break, news and updates continue on the other side. Stay tuned.

0: that one of the accused, Anukalp Mishra, witnessed a dramatic change in his lifestyle over the past few years. From a luxury home and a farmhouse to plans of buying an SUV, investigators are now probing whether these assets were funded using money allegedly siphoned from devotees' donations or not. Take a look at the special report that breaks down all the details.
1: A luxurious house, a farmhouse, and plans to buy a brand new Scorpio SUV. Police say these are among the assets linked to Anukalp Mishra, who is believed to be the alleged mastermind in the Ram Temple donation theft case. Anukalp Mishra and his brother Lovekush Mishra are among the eight people arrested for allegedly embezzling funds from the donation boxes. According to investigators, Anukalp arranged for Lovekush to join the team responsible for counting donations, giving both access to the cash collected from devotees. A visit to Anukalp's village has now raised more questions. Neighbors say that the family's financial condition has changed dramatically in recent years. They claim the family, once struggling financially, suddenly acquired expensive assets and built one of the most prominent house in the villages.
2: ये जो प्लॉट है, ये काफी बड़ा प्लॉट है, जो कि अनुकल्प मिश्रा ने हाल ही में लिया था, और इसमें एक फार्म हाउस नुमा जो प्लॉट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाय यहाँ पर बंधी हुई हैं। इसके अलावा टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया गया है, और जो जानकारी मिली है कि अनुकल्प मिश्रा ने जो अप्रैल के महीने में जो भव्य रामकथा करवाई थी, वो उसका आयोजन यहीं पर हुआ था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी ये लैंड है, और गांव वालों से जानकारी मिली है कि ये ज़मीन अनुकल्प मिश्रा ने अभी कुछ वक्त पहले ली थी, और लाखों रुपए की ये ज़मीन है जिसको परचेज किया गया था।
3: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया।
2: कहाँ पे?
3: फैजाबाद में।
2: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
3: हाँ, किसी स्कूल में
2: जी।
3: तो वहाँ से वो पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो। बस इतने जानते हैं।
2: राम मंदिर में काम भी करते थे?
3: इसका हमें कुछ नहीं मालूम।
2: उनका नाम बाबा कैसे आया फिर
3: बता नहीं सकते।
1: Locals also told that Anukalp recently built a farmhouse on the outskirts of the village, reportedly worth around rupees 65 lakhs.
2: ये जमीन कुछ वक्त पहले अनुकल्प मिश्रा ने ली थी, और गांव में भी उसका आलीशान मकान है। इसके अलावा अयोध्या में भी एक उसका आलीशान मकान है, जो कि उसने पिछले साल 50 लाख रुपए से ज़्यादा में लिया था। तो गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले तक उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी, उसके पास इस तरह की प्रॉपर्टियां नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते उसने न सिर्फ गांव में, गांव के बाहर, बल्कि यहां से लेकर अयोध्या तक कई प्रॉपर्टियां बनाई हैं, और कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टियां करोड़ों में है।
1: His neighbors added that while he already owned a vehicle, he was in the process of booking an SUV. Investigators are also examining a grand 7-day religious event allegedly organized by Anukalp earlier this year. The event was attended by several prominent personalities, including Champat Rai. With the investigation widening, the police is now tracing the alleged money trail and examining the assets of the accused. With fresh leads emerging, the Ram Temple donation theft case is expected to throw up more startling revelations in the days ahead. With Mukesh Singh Sengar in Ayodhya, Bureau Report, NDTV.
0: Let's bring you more updates on this story at this hour. Now, the war of words over Ram Mandir donation theft row have now intensified. Both the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and opposition leader Samajwadi Party's Akhilesh Yadav have launched sharp attacks against one another. Now, Yogi Adityanath has accused the Samajwadi Party of playing double game and even firing on Ram devotees during their rule. He further went on to say that the Samajwadi Party has no agenda beyond appeasement politics. Meanwhile, Akhilesh Yadav has called the irregularities a mockery of faith and even alleged that Yogi Adityanath has no concern for faith. The Samajwadi Party chief also questioned Yogi Adityanath's priorities and called for accountability coming in from the BJP government.
4: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को

0: say these assets were funded using money allegedly siphoned from devotees' donations or not. Take a look at the special report that breaks down all the details.
1: A luxurious house, a farmhouse, and plans to buy a brand new Scorpio SUV. Police say these are among the assets linked to Anukalp Mishra, who is believed to be the alleged mastermind in the Ram Temple donation theft case. Anukalp Mishra and his brother Lovekush Mishra are among the 8 people arrested for allegedly embezzling funds from the donation boxes. According to investigators, Anukalp arranged for Lovekush to join the team responsible for counting donations, giving both access to the cash collected from devotees. A visit to Anukalp's village has now raised more questions. Neighbours say that the family's financial condition has changed dramatically in recent years. They claim the family, once struggling financially, suddenly acquired expensive assets and built one of the most prominent houses in the villages.
2: ये जो प्लॉट है, ये काफी बड़ा प्लॉट है, जो कि अनुकल्प मिश्रा ने हाल ही में लिया था, और इसमें एक फार्म हाउस नुमा जो प्लॉट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाय यहाँ पर बंधी हुई हैं। इसके अलावा टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया गया है, और जो जानकारी मिली है कि अनुकल्प मिश्रा ने जो अप्रैल के महीने में जो भव्य रामकथा करवाई थी, वो उसका आयोजन यहीं पर हुआ था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी ये लैंड है, और गांव वालों से जानकारी मिली है कि ये ज़मीन अनुकल्प मिश्रा ने अभी कुछ वक्त पहले ली थी, और लाखों रुपए की ये ज़मीन है जिसको परचेज किया गया था।
3: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया।
4: कहाँ पे?
3: फैजाबाद में।
4: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
3: हाँ, किसी स्कूल में
4: जी।
3: तो वहाँ से वो पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो। बस इतने जानते हैं।
4: राम मंदिर में काम भी करते थे?
3: इसका हमें कुछ नहीं मालूम।
4: उनका नाम बाबा कैसे आया फिर
3: बता नहीं सकते।
1: Locals also told that Anukalp recently built a farmhouse on the outskirts of the village, reportedly worth around rupees 65 lakhs.
2: ये जमीन कुछ वक्त पहले अनुकल्प मिश्रा ने ली थी, और गांव में भी उसका आलीशान मकान है। इसके अलावा अयोध्या में भी एक उसका आलीशान मकान है, जो कि उसने पिछले साल 50 लाख रुपए से ज़्यादा में लिया था। तो गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले तक उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी, उसके पास इस तरह की प्रॉपर्टियां नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते उसने न सिर्फ गांव में, गांव के बाहर, बल्कि यहां से लेकर अयोध्या तक कई प्रॉपर्टियां बनाई हैं, और कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टियां करोड़ों में है।
1: His neighbors added that while he already owned a vehicle, he was in the process of booking an SUV. Investigators are also examining a grand 7-day religious event allegedly organized by Anukalp earlier this year. The event was attended by several prominent personalities, including Champat Rai. With the investigation widening, the police is now tracing the alleged money trail and examining the assets of the accused. With fresh leads emerging, the Ram Temple donation theft case is expected to throw up more startling revelations in the days ahead. With Mukesh Singh Sengar in Ayodhya, Bureau Report, NDTV.
0: Let's bring you more updates on this story at this hour. Now, the war of words over Ram Mandir donation theft row have now intensified. Both the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and opposition leader Samajwadi Party's Akhilesh Yadav have launched sharp attacks against one another. Now, Yogi Adityanath has accused the Samajwadi Party of playing double game and even firing on Ram devotees during their rule. He further went on to say that the Samajwadi Party has no agenda beyond appeasement politics. Meanwhile, Akhilesh Yadav has called the irregularities a mockery of faith and even alleged that Yogi Adityanath has no concern for faith. The Samajwadi Party chief also questioned Yogi Adityanath's priorities and called for accountability coming in from the BJP government.
5: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या

0: brother Lovkush Mishra are among the 8 people arrested for allegedly embezzling funds from the donation boxes. According to investigators, Anukalp arranged for Lovkush to join the team responsible for counting donations, giving both access to the cash collected from devotees. A visit to Anukalp's village has now raised more questions. Neighbors say that the family's financial condition has changed dramatically in recent years. They claim the family, once struggling financially, suddenly acquired expensive assets and built one of the most prominent house in the villages.
1: ये जो प्लॉट है, ये काफी बड़ा प्लॉट है, जो कि अनुकल्प मिश्रा ने हाल ही में लिया था, और इसमें एक फार्म हाउस नुमा जो प्लॉट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाय यहाँ पर बंधी हुई हैं। इसके अलावा टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया गया है, और जो जानकारी मिली है कि अनुकल्प मिश्रा ने जो अप्रैल के महीने में जो भव्य रामकथा करवाई थी, वो उसका आयोजन यहीं पर हुआ था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी ये लैंड है, और गांव वालों से जानकारी मिली है कि ये ज़मीन अनुकल्प मिश्रा ने अभी कुछ वक्त पहले ली थी, और लाखों रुपए की ये ज़मीन है जिसको परचेज किया गया था।
2: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम लिखाया गया।
3: कहाँ पे?
2: फैजाबाद में।
3: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
2: हाँ, किसी स्कूल में
3: जी।
2: तो वहाँ से वो पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है। बस इतना जानता हूँ।
3: राम मंदिर में काम भी करते थे?
2: इसका हमें कुछ नहीं मालूम।
3: उनका नाम बाबा कैसे आया
2: बता नहीं सकते।
0: Locals also told that Anukalp recently built a farmhouse on the outskirts of the village, reportedly worth around rupees 65 lakhs.
1: ये जमीन कुछ वक्त पहले अनुकल्प मिश्रा ने ली थी, और गांव में भी उसका आलीशान मकान है। इसके अलावा अयोध्या में भी एक उसका आलीशान मकान है, जो कि उसने पिछले साल 50 लाख रुपए से ज़्यादा में लिया था। तो गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले तक उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी, उसके पास इस तरह की प्रॉपर्टियां नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते उसने न सिर्फ गांव में, गांव के बाहर, बल्कि यहां से लेकर अयोध्या तक कई प्रॉपर्टियां बनाई हैं, और कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टियां करोड़ों में है।
0: His neighbors added that while he already owned a vehicle, he was in the process of booking an SUV. Investigators are also examining a grand 7-day religious event allegedly organized by Anukalp earlier this year. The event was attended by several prominent personalities, including Champat Rai. With the investigation widening, the police is now tracing the alleged money trail and examining the assets of the accused. With fresh leads emerging, the Ram Temple donation theft case is expected to throw up more startling revelations in the days ahead. With Mukesh Singh Sengar in Ayodhya, Bureau Report, NDTV.
4: Let's take you through more developments taking

0: beyond appeasement politics. Meanwhile, Akhilesh Yadav called the irregularities a mockery of faith and even alleged that Yogi Adityanath has no concern for faith. Samajwadi Party chief also questioned Yogi Adityanath's priorities and called for accountability coming in from the BJP government.
1: में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
2: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़, इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
3: मैं पूछना चाहता हूं महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है, उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा है, उसकी मंदिर से कोई आस्था नहीं थी, इनकी तो मंदिरों से आस्था है, इसके बावजूद लूट मचा रखी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए।
0: With that, slipping into a very short break, more news and updates on the other side. Stay with us.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आरती और मसाला।
4: The news, Ayush. Since when do we do scripts? Fair point. Picture this. The biggest stage. Floodlights.
5: Wow.
4: 4K. The works. Where's the hook?

0: वालों के मुताबिक कुछ साल पहले तक उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी, उसके पास इस तरह की प्रॉपर्टियां नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते उसने न सिर्फ गांव में, गांव के बाहर, बल्कि यहां से लेकर अयोध्या तक कई प्रॉपर्टियां बनाई हैं और कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टियां करोड़ों में है।
1: His neighbors added that while he already owned a vehicle, he was in the process of booking an SUV. Investigators are also examining a grand 7-day religious event allegedly organized by Anukalp earlier this year. The event was attended by several prominent personalities, including Champat Rai. With the investigation widening, the police is now tracing the alleged money trail and examining the assets of the accused. With fresh leads emerging, the Ram Temple donation theft case is expected to throw up more startling revelations in the days ahead. With Mukesh Singh Sengar in Ayodhya, Bureau Report, NDTV.
2: War of words over Ram Mandir donation theft row has intensified. Both the UP Chief Minister Yogi Adityanath and opposition leader Akhilesh Yadav have launched sharp attacks against each other. Yogi has accused Samajwadi Party of playing double game and even firing on Ram devotees during their rule. He went further and said SP has no agenda beyond appeasement politics. On the other hand, Akhilesh Yadav called the irregularities a mockery of faith and alleged that Yogi Adityanath has no concern for faith. SP chief also questioned Yogi's priorities and called for accountability from the BJP government. Meanwhile, Congress leader Rashid Alvi strongly condemned the incident, comparing the accused to Mahmood of Ghazni and demanding strict action and imprisonment for those responsible. Take a look at some of the reactions.
3: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
4: पूछना चाहता हूं, महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है? उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा है। उसकी मंदिर से कोई आस्था नहीं थी, इनकी तो मंदिरों से आस्था है, इसके बावजूद लूट मचा रखी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए।
3: मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
5: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
6: तो कर तो ये छोटे छोटे पकड़ के कि रसोईया है, ये ड्राइवर है, ये इनकी औकात है, कितना पैसा गया है, इनकी औकात थोड़ी है। 16 करोड़ आदमी बता रहे हैं, आप आते हैं एक साल के अंदर और मिनिमम चंदा अगर 100 रुपए भी है ना, छोटे से छोटा आदमी भी 100 रुपए से कम नहीं दे रहा है, वहां करोड़ों रुपए गया है, तो 1600 करोड़ है, 1664600 करोड़ रुपया बैठता है। बता दीजिए, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है।
2: Let's shift our focus to some breaking updates coming in from the state of Tamil Nadu. Trouble mounts for AIADMK as one more AIADMK MLA has resigned. This time it is MLA MR Vijay Bhaskar who has resigned from his post. C. Vijay Bhaskar is the one who has resigned, making it the sixth AIADMK MLA to resign in the last few months. Let's go straight across to Vijay Gopal on this. Vijay, of course, trouble mounting for AIADMK, crisis deepening within AIADMK as one more MLA resign. But take us through the details. Is he going to be joining the TVK? Take us through what is going on.
7: Radhika, as of now, we don't have clear information whether MR Vijay Bhaskar going to join TVK or not. Because earlier, C. Vijay Bhaskar, who is also an ADMK member, ADMK MLA and former minister, resigned from ADMK and he is waiting to join TVK. Even as per our sources, there was a scheduled event today, that is on Monday, a big event where C. Vijay Bhaskar along with his supporters to join Tamilaga Vetrikalagam, but it got delayed. So what our sources indicate is both MR Vijay Bhaskar and C. Vijay Bhaskar are likely to join TVK, but we have to wait for official information when the event is going to happen. As of now, as we speak, a while ago, MR Vijay Bhaskar, AIADMK MLA from Karur constituency, tendered his resignation, submitted his resignation to Assembly Speaker JCD Prabhakar. It is seen as a big setback, Radhika, because MR Vijay Bhaskar is seen as a face of AIADMK in Karur constituency. So this is seen as a big setback for AIADMK, as C. Vijay Bhaskar, who is from a Pudukkottai district, also signed his MLA position and likely to join TVK. So many leaders have already resigned and joined Tamilaga Vetrikalagam. You know, as of now, 7 AIADMK MLAs have resigned. First four resigned and then four MLAs have already joined Tamilaga Vetrikalagam, and also sources indicate they are likely to contest on bipole also. But we have to wait for a clear information what exactly MR Vijay Bhaskar is up to. But as we speak, he has tendered his resignation. This is seen as a big setback. And also very recently, also a TVK senior leader, Minister Adav Arjuna, also has insisted, in saying that

0: जमीन अनुकल्प मिश्रा ने अभी कुछ वक्त पहले ली थी और लाखों रुपए की ये जमीन है जिसको परचेज किया गया था।
1: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया।
2: कहाँ पे?
1: फैजाबाद में।
2: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
1: हाँ, किसी स्कूल में
2: जी।
1: तो वहाँ से वो पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई कर रहा है वो। बस इतने जानता हूँ।
2: राम मंदिर में काम भी करते थे?
1: इसका हमें कुछ नहीं मालूम।
2: उनका नाम बाबा कैसे आया फिर?
3: Locals also told that Anukalp recently built a farmhouse on the outskirts of the village, reportedly worth around rupees 65 lakhs.
0: ये जमीन कुछ वक्त पहले अनुकल्प मिश्रा ने ली थी और गांव में भी उसका आलीशान मकान है। इसके अलावा अयोध्या में भी एक उसका आलीशान मकान है जो कि उसने पिछले साल 50 लाख रुपए से ज्यादा में लिया था। तो गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले तक उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी। उसके पास इस तरह की प्रॉपर्टियां नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते उसने न सिर्फ गांव में, गांव के बाहर, बल्कि यहां से लेकर अयोध्या तक कई प्रॉपर्टियां बनाई हैं और कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टियां करोड़ों में है।
3: His neighbors added that while he already owned a vehicle, he was in the process of booking an SUV. Investigators are also examining a grand 7-day religious event allegedly organized by Anukalp earlier this year. The event was attended by several prominent personalities including Champat Rai. With the investigation widening, the police is now tracing the alleged money trail and examining the assets of the accused. With fresh leads emerging, the Ram Temple donation theft case is expected to throw up more startling revelations in the days ahead. With Mukesh Singh Sengar in Ayodhya, Bureau Report, NDTV.
4: And the war of words has exploded over the Ram Mandir donation theft row. Both UP Chief Minister Yogi Adityanath and opposition leader Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav launched sharp attacks against one another. Yogi accused the Samajwadi Party of playing a double game and even firing on Ram Mandir devotees during their rule going back, you know, decades. He went further and said the SP has no agenda beyond appeasement politics. On the other hand, Akhilesh Yadav called the irregularities a mockery of faith, and he alleged that Chief Minister Adityanath has no concern for faith. SP Chief also questioned Yogi's priorities, calling for accountability from the BJP government. Meanwhile, Congress leader Rashid Alvi strongly condemned the incident, comparing the accused to Mahmood of Ghazni and demanding strict action and imprisonment for all those who are responsible.
5: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
6: मैं पूछना चाहता हूं, महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है? उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा है। उसकी मंदिर से कोई आस्था नहीं थी, इनकी तो मंदिरों से आस्था है, इसके बावजूद लूट मचा रखी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए।
5: मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से

0: And the war of words over the Ram Mandir donation theft row intensifying. Both the UP Chief Minister Yogi Adityanath and the opposition leader Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav launched sharp attacks against one another. The Chief Minister accused Samajwadi Party of playing a double game. He brought back the issue of firing on Ram devotees during their rule decades ago. He also went further and said the SP has no agenda beyond appeasement politics. On the other hand, SP Chief Akhilesh Yadav called the irregularities a mockery of faith, and he alleged Chief Minister Adityanath has no concern for faith. SP Chief also questioned Yogi's priorities and called for accountability from the BJP government. Meanwhile, Congress leader Rashid Alvi strongly condemned the incident, comparing the accused to Mahmood of Ghazni, also looting temples and demanding strict action and imprisonment for those responsible.
1: क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
2: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
3: मैं पूछना चाहता हूं, महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है? उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा है। उसकी मंदिर से कोई आस्था नहीं थी, इनकी तो मंदिरों से आस्था है, इसके बावजूद लूट मचा रखी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए।
4: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
5: हम राम भक्त लोग हैं और राम भक्तों की सरकार है। देश में प्रदेश में एसआईटी गठित है, जांच हो रही है, एफआईआर हो चुकी है, पारदर्शिता से जांच हो रही है और जो दोषी होंगे, मैंने कहा बक्से नहीं जाएंगे।
0: Now, the latest in the Ketan Agarwal murder case, and the investigation has entered a crucial phase with the investigators uncovering fresh details about the alleged conspiracy. Now, according to call data records, Sia and Chetan, both the accused, last spoke on the phone exactly 34 minutes before the murder. During this call, Sia allegedly provided Chetan with a final signal regarding Ketan's exact location. Also, both accused deleted nearly 3 months of chat backups and voice notes from their phones immediately after committing the crime. Police sources also claim that Sia Goyal and Chetan Chaudhary traveled together to Udaipur even before Sia's engagement, and are probing allegations that nearly 1 crore was taken from Ketan in the name of wedding preparations, which was then transferred to Chetan. The duo is expected to be produced before the court, as police will seek an extension of their custody.
6: आज सुबह सिया को हम, सिया ने बताया जैसे हम उसको वहां पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया।
7: और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था?
6: उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया।
8: नव्हती त्याच्या भावानं सोहेलनं तिला दंडाला धरून गाडीमध्ये बसवलं। बसवल्यानंतर मी लगेच टाकलो आणि मला रियाच्या आई वडिलांनी म्हणले की सावकाश जावा। मी नंतर सावकाश गाडी नेली।

0: कल्पना कर सकता था? श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़, इनकी चतुराई है, चालबाजी है, और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
1: मैं पूछना चाहता हूं, महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है? उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा है। उसकी मंदिर से कोई आस्था नहीं थी, इनकी तो मंदिरों से आस्था है, इसके बावजूद लूट मचा रखी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए।
2: An investigation into the alleged theft of donations from Ayodhya Ram Temple has revealed startling details. Police claim one of the key accused, Anukalp Mishra, witnessed a dramatic change in his lifestyle over the past few years, from a luxury home and a farmhouse to plans of buying an SUV. Investigators are now probing whether these assets were funded using money allegedly siphoned from donations made by devotees. Take a look at this report.
3: A luxurious house, a farmhouse, and plans to buy a brand new Scorpio SUV. Police say these are among the assets linked to Anukalp Mishra, who is believed to be the alleged mastermind in the Ram Temple donation theft case. Anukalp Mishra and his brother Lovekush Mishra are among the eight people arrested for allegedly embezzling funds from the donation boxes. According to investigators, Anukalp arranged for Lovekush to join the team responsible for counting donations, giving both access to the cash collected from devotees. A visit to Anukalp's village has now raised more questions. Neighbors say that the family's financial condition has changed dramatically in recent years. They claim the family, once struggling financially, suddenly acquired expensive assets and built one of the most prominent house in the villages.
4: ये जो प्लॉट है, ये काफी बड़ा प्लॉट है, जो कि अनुकल्प मिश्रा ने हाल ही में लिया था, और इसमें एक फार्म हाउस नुमा जो प्लॉट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाय यहाँ पर बंधी हुई हैं। इसके अलावा टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया गया है, और जो जानकारी मिली है कि अनुकल्प मिश्रा ने जो अप्रैल के महीने में जो भव्य रामकथा करवाई थी, वो उसका आयोजन यहीं पर हुआ था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी ये लैंड है, और गांव वालों से जानकारी मिली है कि ये ज़मीन अनुकल्प मिश्रा ने अभी कुछ वक्त पहले ली थी, और लाखों रुपए की ये ज़मीन है जिसको परचेज किया गया था।
5: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया।
6: कहाँ पे?
5: फैजाबाद में।
6: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
5: हाँ, किसी स्कूल में
6: जी।
5: तो वहाँ से वो पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो। बस इतने जानते हैं।
6: राम मंदिर में काम भी करते थे?
5: इसका हमें कुछ नहीं मालूम।
6: उनका नाम बाबा कैसे आया फिर
5: बता नहीं सकते।
3: Locals also told that Anukalp recently built a farmhouse on the outskirts of the village, reportedly worth around rupees 65 lakhs.
4: ये जमीन कुछ वक्त पहले अनुकल्प मिश्रा ने ली थी, और गांव में भी उसका आलीशान मकान है। इसके अलावा अयोध्या में भी एक उसका आलीशान मकान है, जो कि उसने पिछले साल 50 लाख रुपए से ज़्यादा में लिया था। तो गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले तक उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी, उसके पास इस तरह की प्रॉपर्टियां नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते उसने न सिर्फ गांव में, गांव के बाहर, बल्कि यहां से लेकर अयोध्या तक कई प्रॉपर्टियां बनाई हैं, और कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टियां करोड़ों में है।
3: His neighbors added that while he already owned a vehicle, he was in the process of booking an SUV. Investigators are also examining a grand 7-day religious event allegedly organized by Anukalp earlier this year. The event was attended by several prominent personalities, including Champat Rai. With the investigation widening, the police is now tracing the alleged money trail and examining the assets of the accused. With fresh leads emerging, the Ram Temple donation theft case is expected to throw up more startling revelations in the days ahead. With Mukesh Singh Sengar in Ayodhya, Bureau Report, NDTV.
2: Let's shift our focus to some breaking updates. 36 years later, Jammu and Kashmir Liberation Front terrorist Yasin Malik has been named in charge sheet

0: इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
1: मैं पूछना चाहता हूं महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है? उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा है। उसकी मंदिर से कोई आस्था नहीं थी, इनकी तो मंदिरों से आस्था है, इसके बावजूद लूट मचा रखी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए।
2: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
3: हम राम भक्त लोग हैं और राम भक्तों की सरकार है। देश में प्रदेश में एसआईटी गठित है, जांच हो रही है, एफआईआर हो चुकी है, पारदर्शिता से जांच हो रही है और जो दोषी होंगे, मैंने कहा बक्से नहीं जाएंगे।
4: ऑलराइट, विद दैट विल स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक। ऑन द अदर साइड विल टेक अ लुक एट द हीट वेव इन यूरोप।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आग प्योर मसाला।
10: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
11: Really?
10: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl

0: accounting of fund, and they are now the accused in this case. So obviously some major questions are there, and now trust will have to reply to police as well as the SIT.
1: All right, Ranveer, thanks so much for joining us. Ranveer, they're reporting from outside the SBI branch where that money was brought, and now questions have been raised suggesting that the branch employees, in fact, had raised the alarm 3 months ago. But more developments in this entire matter coming from Ayodhya, where the Bar Association has, in fact, raised the issue, and there's outrage as well among the Bar Association members, and they have said that Champat Rai and other senior dignitaries who were a part of the Ram Temple Trust, that they must leave Ayodhya in 3 days' time. Otherwise, they're going to hold a big protest. And they've also said that no lawyer from the Ayodhya Bar Association will defend any of the accused.
2: Bar ne aaj ye faisla liya hai ki SIT ka virodh kiya hai. Ye jaanch CBI se honi chahiye. Dusra ye kaha hai ki jiladhikari sahab ko patra denge कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपक राय, नरेंद्र अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ, क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो है बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है वो लोग लाए गए हैं। इसमें बड़ी चोरी हुई है, घोटाला भी बहुत है, निर्माण से लेकर के आज तक जाँच की जाए इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी, नहीं करेंगे सीबीआई के लिए जहां तक जाने पर की स्थिति है, वो उसी पैसे से जो वकला साहिबान जमा करेंगे अभियुक्तों से लेकर के, उसी पैसे से प्रोसिक्यूट को प्रोसिक्यूशन की पैरवी।
0: वकील अगर मुकदमा लड़े तो?
2: मुकदमा लड़े तो वो लड़े, एप्लीकेशन देगा, उसे अनुमति दे दी जाएगी। अगर वो पैसा, इतनी बड़ी चोरी हुई इतने करोड़ों कई करोड़ों की, तो 5 लाख रुपये पर हेड तो वकीलों को वो दे ही सकता है। वो वकील ला के हमारे यहाँ वकालत खाने में जमा करेंगे, जितने नाम ले जाने चाहते हैं उतना नाम ले लें, उसी पैसे का प्रोसिक्यूशन पैरवी करेगा।
1: All right, and the politics has also exploded over the Ram Mandir theft case, the Chanda Chori case, and there's a war of words that has broken out between UP Chief Minister Yogi Adityanath as well as Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, who is attacking the BJP government over this theft. In fact, Yogi has accused the Samajwadi Party of playing double game and even firing on Ram devotees during their rule. So he's brought up that issue again, which he does time and again. How he went further, saying the Samajwadi Party has no agenda beyond appeasement politics. On the other hand, SP Chief Akhilesh Yadav called irregularities a mockery of faith, alleging that Yogi Adityanath has no concern for faith. The SP Chief also questioned Yogi's priorities, calling for accountability from the BJP government. Meanwhile, Congress leader Rashid Alvi strongly condemned the incident, the fact that donations were being stolen from the Ram temple, and compared the accused to Mahmood of Ghazni, who also is looted temples, and has demanded strict action and imprisonment for those responsible.
3: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
4: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
5: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
1: In fact, the police have claimed that one of the prime accused, and Anukalp Mishra, that his lifestyle saw a dramatic change over the last couple of years. So NDTV visited his house in the village where we found a huge house that he had built in the village, with many villagers questioning his lifestyle as well. He had bought a farmhouse also, and he had booked an SUV. Take a look at this ground report.
6: A luxurious house, a farmhouse, and plans to buy a brand new Scorpio SUV. Police say these are among the assets linked to Anukalp Mishra, who is believed to be the alleged mastermind in the Ram Temple donation theft case. Anukalp Mishra and his brother Lovekush Mishra are among the 8 people arrested for allegedly embezzling funds from the donation boxes. According to investigators, Anukalp arranged for Lovekush to join the team responsible for counting donations, giving both access to the cash collected from devotees. A visit to Anukalp's village has now raised more questions. Neighbors say that the family's financial condition has changed dramatically in recent years. They claim the family, once struggling financially, suddenly acquired expensive assets and built one of the most prominent house in the villages.
7: ये जो प्लॉट है, ये काफी बड़ा प्लॉट है, जो कि अनुकल्प मिश्रा ने हाल ही में लिया था, और इसमें एक फार्म हाउस नुमा जो प्लॉट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाय यहाँ पर बंधी हुई हैं। इसके अलावा टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया गया है, और जो जानकारी मिली है कि अनुकल्प मिश्रा ने जो अप्रैल के महीने में जो भव्य रामकथा करवाई थी, वो उसका आयोजन यहीं पर हुआ था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी ये लैंड है, और गांव वालों से जानकारी मिली है कि ये ज़मीन अनुकल्प मिश्रा ने अभी कुछ वक्त पहले ली थी, और लाखों रुपए की ये ज़मीन है जिसको परचेज किया गया था।
8: पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया।
7: कहाँ पे?
8: फैजाबाद में।
7: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
8: हाँ, किसी स्कूल में
7: जी।
8: तो वहाँ से वो पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो। बस इतने जानते हैं।
7: राम मंदिर में काम भी करते थे?
8: इसका हमें कुछ नहीं मालूम।
7: उनका नाम बाबा कैसे आया फिर
8: बता नहीं सकते।
6: Locals also told that Anukalp recently built a farmhouse on the outskirts of the village, reportedly worth around rupees 65 lakhs.
7: ये जमीन कुछ वक्त पहले अनुकल्प मिश्रा ने ली थी, और गांव में भी उसका आलीशान मकान है। इसके अलावा अयोध्या में भी एक उसका आलीशान मकान है, जो कि उसने पिछले साल 50 लाख रुपए से ज्यादा में लिया था। तो गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले तक उसकी माली हालत बहुत खराब थी, उसके पास इस तरह की प्रॉपर्टियां नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते उसने न सिर्फ गांव में, गांव के बाहर, बल्कि यहां से लेकर अयोध्या तक कई प्रॉपर्टियां बनाई हैं, और कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टियां करोड़ों में है।
6: His neighbors added that while he already owned a vehicle, he was in the process of booking an SUV. Investigators are also examining a grand 7-day religious event allegedly organized by Anukalp earlier this year. The event was attended by several prominent personalities, including Champat Rai. With the investigation widening, the police is now tracing the alleged money trail and examining the assets of the accused. With fresh leads emerging, the Ram Temple donation theft case is expected to throw up more startling revelations in the days ahead. With Mukesh Singh Sengar in Ayodhya, Bureau Report, NDTV.
1: All right, and the opposition, however, has claimed that it's only the small fish who've been caught so far. Well, with that, we'll slip into a short break. Coming up on the other side, we'll tell you about the Prime Minister's trip to Seychelles. Stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क

0: Welcome back. You're watching Nationwide at 6 with me, Raisha Sehgal. Our top focus on the show today, the anatomy of the Mandir scandal after ex-chief of the Ram Mandir now being questioned. Also on Nationwide at 6, we'll tell you through the deleted chats and destroyed evidence when it comes to the Pune murder mystery. Lots more lined up. But first, let's start with the Ram Mandir probe. The ongoing probe into the Ram Mandir donation theft has intensified. The Supreme Court will hear the matter after July 13. Sources say that the accused Tinu Yadav allegedly stashed away large amounts of cash, fearing the investigation. Well, his entire network is now under the scanner, while investigators are also examining possible lapses in the temple's security arrangements. The theft reportedly came to light following a dispute over the stolen cash. Sources further claim that raids at Tinu Yadav's residence led to the recovery of cash, huge amounts of cash, jewellery and even property documents. Remember, Tinu Yadav is supposed to be a close aide of Champat Rai, who has resigned. All of which have now been seized. All the cash, all the jewellery which were recovered from Tinu Yadav's residence has now been seized as the probe, as we speak, gathers pace. Let's now take you to some of the new details which have emerged when it comes to the Ram Mandir probe. What are some of the big revelations so far? The first big revelation is the digital, when we talk about the digital evidence, is the WhatsApp chats which were allegedly deleted. Second, some mobile phones reportedly were even formatted. Remember, all eight accused are in jail as we speak, but we're taking through some of the digital evidence which have come to the fore. Third, accused tried to dispose of stolen funds as well. Let's now tell you about the wealth trail as well. Wealth of several accused are also under scrutiny because there were major changes when it comes to the lifestyle as well, because of all the money that is siphoned off. Apart from that, assets allegedly increased 50 to 100 times of all the eight accused, including Tinu Yadav, who have, of course, now under police custody. When we talk about other aspects, land, plots, properties, they all are under the scanner. So what is the accused network? 30 plus people are now linked to Tinu Yadav's network. SIT, as we speak, they're widening the probe into alleged associates as well. But there are various security, like I mentioned, SIT is probing this matter. And of course, the aspect and the range has been widened. When we talk about the security lapses, now number one, control room in charge is also under the scanner. Number two, security personnel are also being investigated at the Ram Mandir. Apart from that, concerned police officials' role also under probe. Trust officials, when we talk about the trust officials who are under the probe, that's our next page. It is the role of trust officials is also being examined right now. And no clean chit has, so the role of the trust officials being examined. And no clean chit is being given to any key functionaries of Ram Mandir. So let's now tell you about the former trust officials who are under the scanner, who they are. First up, Champat Rai, ex-chief of Mandir Trust. He is under the scanner and he's also being questioned. Second, Gopal Rai, he's the former trust member and he is all set to be summoned. He's likely to be summoned right now. Third, Anil Mishra, he's an ex-trustee and he is also likely to be summoned. So apart from all these three very crucial individuals, Champat Rai has been questioned. He is under the scanner. Police officials are asking if Champat Rai knew of all the theft, of all the money being siphoned off from the Ram Mandir. Now, let's now tell you about Champat Rai. He's the key individual who has been questioned. He is under the police custody. First up, did Champat Rai know about the theft at the Ram Mandir? So the bank raised an alarm on theft 3 months ago. Bank sought removal of the counting staff because there were various discrepancies when it came when it comes to the amount of money which was deposited in the bank. Third, removal procedure was initiated by an outsourcing firm. Trust officials allegedly blocked removal action. And Champat Rai was the man who prevented action against the staff. removal procedure halted because of Champat's influence, and the staff continued despite bank's theft warning. Theft allegedly continued unchecked as well. Hence, these are some of the key allegations which point to the fact that did Champat Rai know about the theft at the Ram Mandir? Or there's some breaking news that's coming in for you at this point of time. There has been a huge increase in the amount of donations before and after the donation controversy in Ayodhya. According to sources, before June 7th, an average of rupees 16 to 18 lakh was deposited in the bank as offerings every day. At the same time, as soon as it came to light, this average has now reached between 22 to 24 lakhs. That means there has been an increase, a clear increase in the earlier average and the current average. Due to heavy crowd on weekends and closure of banks, more money was deposited on Monday. Well, the question is whether around rupees 5 to 6 lakh were being stolen every day or not. More news coming in on this regarding the Ayodhya Ram Mandir donation row is that the Ayodhya police is now probing the Ram Mandir case. They will now scrutinize the records of the close relatives and associates of all the 8 accused as we speak. Staying on with this story right now, the investigation into the alleged theft of donations from the Ayodhya Ram temple has revealed startling details. Police claim one of the key accused, his name Anukalp Mishra, witnessed a dramatic change in his lifestyle over the past few years. From a luxury home and a farmhouse to plans of buying an SUV. Investigators are now probing whether these assets were funded using money allegedly siphoned off from donations made by the devotees. Here's more.
1: A luxurious house, a farmhouse, and plans to buy a brand new Scorpio SUV. Police say these are among the assets linked to Anukalp Mishra, who is believed to be the alleged mastermind in the Ram Temple donation theft case. Anukalp Mishra and his brother Lovekush Mishra are among the 8 people arrested for allegedly embezzling funds from the donation boxes. According to investigators, Anukalp arranged for Lovekush to join the team responsible for counting donations, giving both access to the cash collected from devotees. A visit to Anukalp's village has now raised more questions. Neighbours say that the family's financial condition has changed dramatically in recent years. They claim the family, once struggling financially, suddenly acquired expensive assets and built one of the most prominent house in the villages.
2: ये जो प्लॉट है, ये काफी बड़ा प्लॉट है, जो कि अनुकल्प मिश्रा ने हाल ही में लिया था, और इसमें एक फार्म हाउस नुमा जो प्लॉट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाय यहाँ पर बंधी हुई हैं। इसके अलावा टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया गया है, और जो जानकारी मिली है कि अनुकल्प मिश्रा ने जो अप्रैल के महीने में जो भव्य रामकथा करवाई थी, वो उसका आयोजन यहीं पर हुआ था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी ये लैंड है, और गांव वालों से जानकारी मिली है कि ये ज़मीन अनुकल्प मिश्रा ने अभी कुछ वक्त पहले ली थी, और लाखों रुपए की ये ज़मीन है जिसको परचेज किया गया था।
3: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि तो यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम लिखाया गया।
4: कहाँ पे?
3: फैजाबाद में।
4: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
3: हाँ, किसी स्कूल में
4: जी।
3: तो वहाँ से पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो। बस इतने जानता हूँ।
4: राम मंदिर में काम भी करते थे?
3: इसका हमें कुछ नहीं मालूम।
4: उनका नाम बाबा कैसे आया फिर
3: बता नहीं सकते।
1: Locals also told that Anukalp recently built a farmhouse on the outskirts of the village, reportedly worth around rupees 65 lakhs.
2: ये ज़मीन कुछ वक्त पहले अनुकल्प मिश्रा ने ली थी, और गांव में भी उसका आलीशान मकान है। इसके अलावा अयोध्या में भी एक उसका आलीशान मकान है, जो कि उसने पिछले साल 50 लाख रुपए से ज़्यादा में लिया था। तो गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले तक उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी, उसके पास इस तरह की प्रॉपर्टियां नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते उसने न सिर्फ गांव में, गांव के बाहर, बल्कि यहां से लेकर अयोध्या तक कई प्रॉपर्टियां बनाई हैं, और कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टियां करोड़ों में है।
1: His neighbors added that while he already owned a vehicle, he was in the process of booking an SUV. Investigators are also examining a grand 7-day religious event allegedly organized by Anukalp earlier this year. The event was attended by several prominent personalities, including Champat Rai. With the investigation widening, the police is now tracing the alleged money trail and examining the assets of the accused. With fresh leads emerging, the Ram Temple donation theft case is expected to throw up more startling revelations in the days ahead. With Mukesh Singh Sengar in Ayodhya, Bureau Report, NDTV.
0: Well, the Ram Mandir donation controversy has now taken a fresh turn, with the Ayodhya Bar Association also intensifying its stand against those accused in the alleged temple donation theft case. At a meeting, lawyers demanded that Champat Rai, Anil Mishra and Gopal Rai should leave Ayodhya within 3 days, warning that they would otherwise blockade the city. The Bar Association also resolved that no advocate would represent the accused in any legal proceedings and warned of action against lawyers who choose to take up their cases. All these developments add another layer of pressure as the controversy over the alleged misuse of temple donations continues.
5: Bar ne aaj ye faisla liya hai ki SIT ka virodh kiya hai, ye jaanch CBI se honi chahiye. दूसरा ये कहा है कि जिलाधिकारी साहब को पत्र देंगे कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपक राय, नरेंद्र अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ, क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो हैं बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है वो लोग लाए गए हैं। इसमें बड़ी चोरी हुई है, घोटाला भी बहुत है, निर्माण से लेकर के आज तक जांच की जाए इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी, नहीं करेंगे सीबीआई के लिए जहां तक जाने पर की स्थिति है, वो उसी पैसे से जो वकला साहिबान जमा करेंगे अभियुक्तों से लेकर के उसी पैसे से प्रोसिक्यूट को प्रोसिक्यूशन की पैरवी।
6: वकील अगर मुकदमा लड़े तो?
5: मुकदमा लड़े तो वो लड़े, एप्लीकेशन देगा, उसे अनुमति दे दी जाएगी। अगर वो पैसा, इतनी बड़ी चोरी हुई इतने करोड़ों कई करोड़ों की, तो 5 लाख रुपए पर हेड तो वकीलों को वो दे ही सकता है। वो वकील ला के हमारे यहाँ वकालत खाने में जमा करेंगे, जितने नाम ले जाने चाहते उतना नाम ले लें, उसी पैसे का प्रोसिक्यूशन पैरवी करेगा।
0: SP Chief Akhilesh Yadav has exclusively spoken to NDTV. He's of course given out this big attack over the Mandir theft. Akhilesh goes on to say BJP has no sharam and no dharam in its dictionary. Akhilesh Yadav also says that theft truth captured on CCTV. That's his big attack over the Ram Mandir donation theft row, and also in his exclusive chat with NDTV. Take a look.
7: यूपी में बहुत कुछ चल रहा है राम मंदिर को लेकर के और चढ़ावा को लेकर, चढ़ावा चोरी।
8: ये बहुत गंभीर विषय है और करोड़ों करोड़ों सनातनी जो लोग हमारे धर्म में आस्था रखते हैं और जिन्हें हमारे श्रद्धा है, और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी सनातनी या कोई भी इस तरह का रहा हो जो भगवान प्रभु श्री राम के पक्ष में ना हो, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, जो जानकारी मिल रही है, और सरकार ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि वहाँ पर इस तरह की घटना घटी है, और SIT की रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, SIT में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि CCTV बंद कर करके जो चढ़ावा आया है उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। तो ये जो आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार CCTV ऑफ कर दें, लाइट बंद कर दें, कोई ना देखे, तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें। तो हमारे प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है, राम धन में अगर चोरी हुई है, रख दें दोबारा, तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ़ कर देंगे।
7: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है? क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है?
8: दोषी मैं नहीं कह सकता, मैं विपक्ष में हूँ, मैं दोषी नहीं कहूँगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों, और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पर इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है। और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जांच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है, आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है, SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है, क्या SIT की भी जांच होगी, क्या SIT की जांच के लिए कौन संस्था होगी फिर?
7: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही वही निगरानी भी कर रहा है, चोरी भी वही कर रहा है।
8: जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने SIT बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि ये बात खुल गई है। और केवल ये नहीं खुली, सुनने में आया है कि जो अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं,
7: आपने कहा कर्नाटक से तार जुड़े हैं, वो कैसे?
8: मैं नहीं कह रहा हूँ, एक एक अयोध्यावासी जानता है कि कुछ चढ़ावा कर्नाटक तक जाता था, और सुनने में ये आया है कि अंडरग्राउंड और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, संगी साथी, जो चुनाव के मैनेजमेंट रखते थे, जो चुनाव में जगह जगह पर लोगों को भेजते थे, जो फर्जी वोट भेजा जाता था, उसके वो हेड थे, वहाँ तक कुछ चढ़ावा पहुँचा है।
0: Staying on with the story now, the war of words over Ram Mandir donation theft row has intensified. Both the UP CM Yogi Adityanath and the opposition leader Akhilesh Yadav have now launched sharp attacks against each other. Yogi has accused Samajwadi Party of playing double game and even firing on Ram devotees during their rule. He went further and said that Samajwadi Party has no agenda beyond appeasement politics. On the other hand, Akhilesh Yadav called the irregularities a mockery of faith and alleged that Yogi Adityanath has no concern for faith. SP chief also questioned Yogi's priorities and called for accountability from the Bharatiya Janata Party government. Meanwhile, Congress leader Rashid Alvi strongly condemned the incident, comparing the accused to Muhammad of Ghazni and demanding strict action and imprisonment for all those who are responsible.
9: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
10: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
11: हम राम भक्त लोग हैं और राम भक्तों की सरकार है, देश में प्रदेश में SIT गठित है, जांच हो रही है, FIR हो चुकी है, पारदर्शिता से जांच हो रही है और जो दोषी होंगे, मैंने कहा बक्से नहीं जाएंगे।
12: मैं पूछना चाहता हूं, महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है? उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आर्थर मसाला।
9: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
10: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
11: Higher rate, check the audio. Higher rate, check the audio.
9: Let's do it. Let's do it. Let's start.
12: Breaking story. We're jumping straight into it.
9: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
13: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
9: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
14: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
13: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
9: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
15: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
16: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज़ रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज़ आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज़ रूम, वीकडेज एट 4 PM।
17: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
18: Really?
17: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
15: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
8: सरसों
19: literally go from the man on the outside looking in now to the man on the inside looking out.
10: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
19: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्टियर मसाला।
10: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
11: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
12: Higher end, check the audio.
10: Let's do it. Let's start.
13: Breaking stories, we're jumping straight into it.
10: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
14: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
10: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
15: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
14: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
10: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
16: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
17: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
18: रियली
17: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, art that made it to the gram, and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
4: Maa bhi hamesha P-Mark mustard oil mein khana banati thi.
3: Kuch to baat hai is dil mein.
5: P-Mark the mustard specialist since 1933.
9: Sarso se sarso.
16: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आके और मसाला।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर।
5: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
8: 1933। सरसों से सरसों।
9: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
11: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
10: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: Welcome back. The Ram Temple donation controversy continues to deepen. All eight accused now have been sent to a 14-day judicial custody, while Ayodhya's lawyers have collectively refused to represent them, citing the sensitivity of the alleged embezzlement of donations. Now, the case has also intensified scrutiny of the trust's functioning following resignations of two senior office bearers and growing demands for greater transparency. As the investigation widens and public attention grows, the bigger issue goes beyond the eight accused people. Is this only about individual wrongdoing, or does it also raise larger questions about accountability in the management of India's most prominent religious institution? Also, there are questions on way the trust was being run. Was there a need for decentralization? Did the trust know about what was happening? Why did it fail to take action earlier? Joining us now is Ratan Sharda of the RSS. We have Siddharth Yadav of the BJP, Sharad Pradhan, senior journalist, and Pradeep Bhatti of the Samajwadi Party. But first, the reactions.
1: SIT mein khud swikar kar rahe hain ke CCTV band kar kar ke jo chadhava aaya hai उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है. तो ये जो आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं. मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार सीसीटीवी ऑफ कर दें, लाइट बंद कर दें, कोई नहीं रखे, तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें. तो हमारे प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है, राम धन में अगर चोरी हुई है, रख दें दोबारा, तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ़ कर देंगे.
2: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है? क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है?
1: दोषी मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, मैं दोषी नहीं कहूँगा. लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों. और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है? और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जाँच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है? आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है? SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या SIT की भी जांच होगी? क्या SIT की जांच के लिए कौन संस्था होगी? फिर
2: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही निगरानी भी कर रहा है, चोरी भी वही कर रहा है?
1: जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने SIT बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि ये बात खुल गई है.
3: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो. ये धूल झोंकने का काम मत करो. एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो. अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है.
4: बार ने आज ये फैसला लिया है कि SIT का विरोध किया है, ये जांच CBI से होनी चाहिए. दूसरा ये कहा है कि जिलाधिकारी साहब को पत्र देंगे कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपक राय, नरेंद्र, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ, क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो है बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है वो लोग लाए गए हैं. इसमें बड़ी चोरी हुई है और घोटाला भी बहुत है. निर्माण से लेकर के आज तक जांच की जाए, इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी. नहीं करेंगे CBI के लिए, जहाँ तक जाने पर की स्थिति है, वो उसी पैसे से जो वकला साहिबान जमा करेंगे अभियुक्तों से लेकर

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर।
5: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
9: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
11: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
10: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: तो ये छोटे छोटे पकड़ के कि रसोईया है, ये ड्राइवर है, ये है, इनकी औकात है? कितना पैसा गया है? इनकी औकात थोड़ी है, 16 करोड़ आदमी बता रहे हैं आप आते हैं एक साल के अंदर। अभी चल रहा है, चलने दीजिए, देखिए क्या करते हैं।
1: राम भक्तों के हत्यारों को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन जो भी मामला है उसकी जांच हो रही है, एसआईटी भी कर रही है, एफआईआर हो गई, पुलिस भी कर रही है, जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे।
2: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
3: Okay, let's take that question to the guest joining us today. Charu Pragya joins us from the BJP. We have political analyst Sajjan Kumar joining us along with senior journalist Ashutosh. But my first question is to Anurag Bhadauria of the Samajwadi Party, because Yogi Adityanath has said very clearly, Anurag Bhadauria, aap Ayodhya ki chinta mat kijiye. Aap agar aapko dharm ki itni chinta hai to aap Mathura ki baat kijiye. Mathura ko mukt karane ke liye ab aap campaign chhod dijiye. Wo aapse kar seva ki mang kar rahe hain, Anurag ji.
4: सवाल यह है कि अयोध्या को तो बचा नहीं पाए। अयोध्या 40 दिन में 70 बार वहाँ पे प्रभु राम के यहाँ चोरी होती रही, और सरकारें भी इनकी हैं, उसमें ट्रस्ट के लोग भी बीजेपी से संबंधित हैं, बीएचपी के हैं, उसके बावजूद भी वहाँ चोरियाँ होती रहीं। प्रभु के घर में चोरी, बीजेपी ने तो आवाज़ उठाई नहीं, आवाज़ तो समाजवादी पार्टी ने उठाई। और जब से इनकी सरकार आई तब से चोरी तो देखने को मिल रही है। मंदिरों में चोरी हो रही है, पेपर चोरी हो रहे हैं, जमीन चोरी हो रही है, जंगल चोरी हो रहे हैं, सरकारें चोरी हो रही है, एमपी एमएलए चोरी हो जा रहे हैं, विश्वास चोरी हो रहा है, और तो और खबरें भी चोरी हो जाती हैं। तो सवाल उठता है कि इनके यहाँ तो चोर, जब से ये सरकार आई इतना भ्रष्टाचार है, चारों तरफ चोरी चोरी देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा विश्वास हमें नहीं था कि प्रभु के घर में भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे, प्रभु के यहाँ भी चोरी करेंगे। वो तो कहो समाजवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, प्रभु के सच्चे भक्त हैं, आदर्श आचरण पर चलने वाले लोग हैं, वो तो हमने पकड़ लिया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो आई भी नहीं थी इतने दिन तक। हम लोग हल्ला मचा रहे थे कि चोरी हुई है, तो बीजेपी गायब थी, बताइए, बोलने को भी तैयार नहीं थी। बीएचपी के लोग आते थे तो पता क्या बोलते थे, ये समाजवादी लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमारे जो करोड़ों हिंदू सनातनी उनको उनके विश्वास को आघात पहुंचा रहे हैं। तब भी हमने बोला था हम उनके विश्वास को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है वहाँ पे चोरी हुई है, हमें पता है वहाँ लूटा गया है, इसलिए समाजवादी ने प्रभु की आवाज़ उठाई है कि मंदिर लूटा जा रहा है। अब चूंकि वो उनकी पिच, जो मंदिर की पिच पे जो कहते हैं धर्म की पिच की बात करते थे लोग, अब इनका नकाब उतर गया है, क्योंकि अब सब लोग जान गए ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। धर्म मेरी लास्ता का विषय है, इनके लिए राजनीतिक विषय है। अब दूसरी पिच तैयार करने लगे, अब दूसरी पिच तैयार कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं ये जो पिच थी, ये जो पिच इन्होंने बनाई थी, इसमें बारिश हो गई है, ये जो इन्होंने पिच तैयार की थी, अब इसमें स्विंग हो रही है, बॉल गुगली हो रही है, बोल्ड हो रहे हैं, तो भाग रहे हैं। अब जो अयोध्या की पिच पे बोल्ड होने लगे, गुगली बॉल पकड़ने लगे, यहाँ पे की गिल्ली उड़ने लगी, प्रभु के नाम पे इन्होंने जिस तरह से वहां पे लूटमार मची हुई थी, हम लोगों ने पकड़ लिया, तो आप दूसरा मुद्दा लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। अब वो पिच पे खेलने को तैयार ही नहीं हो रहे।
3: मथुरा,
4: सवाल है कि हम समाजवादी लोग हैं, जहां जहां प्रभु के नाम पे चोरी होगी, जहां जहां प्रभु के नाम पे इस तरह का या दान पात्र में गड़बड़ी होगी, हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम सनातनी लोग, हम बीजेपी से राजनीति नहीं करते।
3: चारू प्रज्ञा, लुक, द थिंग इज दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज द गोल पोस्ट एंड समाजवादी पार्टी इज नॉट गोइंग टू फॉल इन दैट ट्रैप। एंड टू यूज अनुराग भदौरियाज एनालॉजी, उन्होंने आपकी पिच खोद दी, उन्होंने आपकी पिच खोद दी, तो आप बैट लेकर के यू हैव चेंज द स्टेडियम, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। डू यू रियली थिंक दैट ब्रिंगिंग अप मथुरा इज गोइंग टू सेव यू फ्रॉम द एंबैरेसमेंट ऑफ अयोध्या?
5: पद्मजा, गुड इवनिंग टू यू, टू माय फेलो पैनलिस्ट, ऑल द व्यूअर्स। I want to first separate the issues. This debate has two different aspects. One is the criminal investigation that is going on in the Ram Mandir Trust. And the second one is the political hypocrisy that Anurag ji so blatantly just displayed in front of you. Let's start with the position of the criminal investigation. BJP has made it extremely clear, nobody is being shielded. If I may say so, Uttar Pradesh is being led by a saffron-wearing monk. He is one person who has stood by Ram Janmabhoomi movement also, and the trust also, and the temple also, as has my entire political party. The birth of our political party was done on this. So the crime of one individual or two individuals or even 10 individuals cannot be institutionalized, and you cannot use this as an excuse to defame the entire trust or the temple, which is exactly what the opposition is trying to do. SIT kisne banayi? Hamari sarkar ne. FIR kisne darj kari? Hamari sarkar ne. Investigation kaun kar raha hai? Hamari sarkar. So let's also remember today the Supreme Court has also made an observation. It has said that the SIT is doing its job just fine. Let it continue.

0: Again, I'm saying, is there one kind of Ram Charita, Ram story in this country?
1: Okay.
0: There are more than 100. Which one is authentic? So you might have a disagreement on that. I might have a disagreement on that.
1: Absolutely. Buddhism
0: has a different Ram story. Jainism has a different Ram story. You go to Himachal, there's a different Ram story. You go to Tamil Nadu, there's a different Ram story.
1: Sure.
0: So
1: I mean,
0: BJP
1: we can all
0: wants
1: have
0: to monopolize the Ram
1: our interpretations
0: story.
1: Of what is the real version of the Ramcharitmanas of the Ramayana. But I think we can draw the line at calling seers and saints Mahashaitan and Jallad. I think the meaning of that is pretty clear to whoever is watching. I'm going to leave it at that because, like we said, one part is the investigation. And on that, without a doubt, there should be the full truth coming out. And the other, though, is the politics, which only promises to get more interesting. Congress delegation going to Ayodhya tomorrow. For the time being, though, all gentlemen, Charu Pragya, thanks very much for joining me. All right, so what is going to be the Samajwadi Party's strategy from here on? We caught up with Akhilesh Yadav himself in conversation with NDTV's Manoranjan Bharti. Listen.
2: यूपी में बहुत कुछ चल रहा है राम मंदिर को लेकर के और चढ़ावा को लेकर चढ़ावा छोड़िए
3: ये बहुत गंभीर विषय है और करोड़ों करोड़ों सनातनी जो लोग हमारे धर्म में आस्था रखते हैं और जिन्हें हमारे श्रद्धा है और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी सनातनी या कोई भी इस तरह का राह हो जो भगवान प्रभु श्री राम के पक्ष में ना हो लेकिन जो खबरें आ रही हैं जो सूचनाएं आ रही हैं जो जानकारी मिल रही है और सरकार ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि वहाँ पर इस तरह की घटना घटी है और SIT की रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं SIT में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि CCTV बंद कर करके जो चढ़ावा आया है उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है तो ये जो आस्था के साथ हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार CCTV ऑफ कर दें लाइट बंद कर दें कोई ना देखे तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें तो हमारे प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है राम धन में अगर चोरी हुई है रख दें दोबारा तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ़ कर देंगे
2: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है
3: दोषी मैं नहीं कह सकता हूँ मैं विपक्ष में हूँ मैं दोषी नहीं कहूँगा लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों और इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जाँच कर रही है SIT आपने रिपोर्ट किसको दी है आपने रिपोर्ट किसको दी है सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है क्या SIT की भी जांच होगी क्या SIT की जांच के लिए कौन सी संस्था होगी फिर
2: तो आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही वही निगरानी भी कर रहा
3: नहीं,
2: है और चोरी भी वही कर रहा है
3: जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं आप ही ने SIT बनाई है तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं जो आस्था रखते हैं वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको माफ़ कर देंगे केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें क्योंकि ये बात खुल गई है और केवल ये नहीं खुली सुनने में आया है कि जो अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं
2: आपने कहा कर्नाटक से तार जुड़े हैं वो कैसे
3: मैं नहीं कह रहा हूँ एक एक अयोध्या वासी जानता है कि कुछ चढ़ावा कर्नाटक तक जाता था और सुनने में ये आया है कि अंडरग्राउंड और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं संगी साथी जो चुनाव के मैनेजमेंट में लगते थे जो चुनाव में जगह जगह पर लोगों को भेजते थे जो फर्जी वोट भेजा जाता था उसके वो हेड थे वहाँ तक कुछ चढ़ावा पहुँचा है
2: तो आप इसको SIR से जोड़ के देख रहे हैं चुनाव से जोड़ के
3: नहीं नहीं उनकी उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो पूरे देश में वोट का मैनेजमेंट करते थे तो उत्तर प्रदेश के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कम से कम वो आए तो हम उनसे सवाल तो करें।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि आइए चलिए मथुरा चलते हैं, कृष्ण मंदिर बनाते हैं, आपके कार्यकाल में नहीं बन पाया कृष्ण मंदिर।
3: नहीं भाई, प्रभु श्री राम के यहाँ चढ़ावा चोरी कर लिया, माखन चोर जिन्हें बोलते हैं उनका भी चढ़ावा चोरी करने का इरादा है क्या आपका? तो आप कहाँ कहाँ चोरी करना चाहते हैं भाई? आपको परेड अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी है, आप अपनी क्रेडिबिलिटी तो साबित करें, इधर उधर की बातें ना करें। पूरा देश जानना चाहता है कि चढ़ावा कहाँ गया है, और जब सीसीटीवी में वो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है।
2: एक नारा भी दिया है आपने कुछ?
3: नहीं, मैंने नारा ये दिया कि भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है।
2: एक और मुद्दा है जो जिसके लिए आपने बहुत इस पे किया, पेपर लीक और जो जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर, पेपर लीक कैसे रुकेगा?
3: देखिए, पढ़ाई आसान हो, पढ़ाई में परीक्षाओं में आसान तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए। सरकार को कम से कम ये निश्चित करना चाहिए पेपर लीक ना हो, परीक्षाएं रद्द ना हो, और इसलिए क्योंकि बहुत सारे नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है और भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज के समय पर अगर हम ये नहीं तय कर सकते कि परीक्षा कैसे होगी, तो आज टेक्नोलॉजी है आपके पास, और अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए नीट का परीक्षा का इतना पेपर लीक हुआ, करोड़ों लोग परिवार जुड़े थे, उन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, दोबारा उनको एग्जाम लिखने लगा।
2: आपको लगता है ये नेशनल इशू है और इंडिया का गठबंधन?
3: नहीं, ये बीजेपी के लिए इशू है, ये बीजेपी को सीरियस लेना। जब आप विकसित भारत अमृत काल की बात कर रहे हैं और आपके यहाँ पेपर लीक हो रहा है, आप दुनिया के में वर्ल्ड इकोनॉमी के वर्ल्ड फोरम पर ही आप जाते हैं और आपके करोड़ों परिवार इस बात के लिए परेशान है कि आप पेपर नहीं करा पा रहे हैं। आप दुनिया के प्लेटफॉर्म पे खड़े होना चाहते हैं लेकिन आप एक सामान्य पेपर नहीं करा पा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। आप एयरफोर्स से क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं, क्या दुनिया में ये उदाहरण बनेगा हमारे भारत का?
2: पिछले दिनों एक अग्निकांड हुआ यहाँ पे, उसके बाद आपने बहुत कुछ कहा, उसको भ्रष्टाचार से जोड़ा है।
3: देखिए, जो बच्चों की जान गई है लखनऊ में, जो बच्चे बच सकते थे, हमारे अगर फोर्स को सही इक्विपमेंट मिलते, ट्रेनिंग अच्छी होती, तो शायद वो दीवार तोड़ देते, और समय पे दीवार तोड़ देते तो सफोकेशन से मरते नहीं। जलने वालों की संख्या कम है जबकि सफोकेशन से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो ये दोषी कौन है? दोषी तो सरकार है ना। इसके लिए सरकार आखिरकार भ्रष्टाचार कर रही थी, और भ्रष्टाचार इसलिए कर रही थी क्योंकि नियमों का पालन नहीं करना है उन्हें।
2: आपने क्यों कहा कि 2027 का चुनाव अंतिम होगा?
3: मैंने अंतिम इसलिए कहा, बंगाल का चुनाव देखने के बाद सेंट्रल फोर्स से आप चुनाव लूट लेंगे, आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? आप ईडी सीए इनकम टैक्स लगा देंगे। कभी हिटलर ने भी यही किया था, हिटलर ने उस समय के अपने जर्मनी के पार्लियामेंट में जो कानून अपने लिए पास करना था फोर्स लगा करके कानून पास कर दिया था। ये 60-70 साल पुरानी बात है, और मुझे तो लगता है यही दोहराना चाहते हैं। बंगाल में चुनाव हुआ, क्या हुआ? आप ये नारा दे रहे थे 400 पार का, और जनता ने समझ लिया कि आप वोट के अधिकार पाने के बाद वोट से आप संविधान बदलेंगे। जनता ने उन्हें नहीं जीतने दिया। जो वोट से नहीं कर पाए वो अब सांसद खरीद के करना चाहते हैं। तो आप सांसद को क्यों डरा रहे हो?
2: जिस तरह से टीएमसी टूटी, शिवसेना टूटी, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पर भी नज़र रहेगी उनकी?
3: नहीं, हमारी इसलिए नहीं टूटेगी, हमारी पीढ़ियों से जुड़े लोगों की पार्टी है। और फिर क्या हमारे टूटने के बाद ही गिनती पूरी होगी? बीजेपी इतने गेम खेलते हैं, उन्हें गिनती पता है, उनको गिनती क्या चाहिए? लेकिन मैं तभी तमाम सांसदों से कहना चाहता हूं कि अगर ये बिल पास हो गया, जो महिला आरक्षण के साथ साथ डिलिमिटेशन का जो बिल पास हो रहा है, उसके बाद बहुत सारे सांसद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो आज बिल पास करेंगे भविष्य में वही नहीं चुनाव लड़ पाएंगे, इसलिए अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचें।
2: आपके ममता बनर्जी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, आप गए भी कलकत्ता, आपके डीएमके से भी अच्छे रिश्ते हैं, क्या आप चाहेंगे डीएमके इंडिया गठबंधन में आए, कुछ कोशिश करेंगे?
3: नहीं, मैं डीएमके के सभी नेताओं से बड़े अच्छे संबंध हैं, और डीएमके का जो इशू है वो जेन्यून है। मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो जो हमारा कंसर्न था, जो हमें अपनी बात कहनी थी उस प्लेटफॉर्म पे, मैंने कही, और वो उस बात को अगर सब मानेंगे, रीजनल फोर्सेस की, रीजनल पार्टीज़ की अपनी बातों को सम्मान के साथ अगर बड़े दल स्वीकार करेंगे तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा।
2: आपने कहा कि इनकाउंटर और जितने भी बुलडोजर चले हैं उसमें अधिकतर पीडीए के लोग,
3: जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, घर पीडीए के टूटे हैं, इनकाउंटर फेक पीडीए के हुए हैं, और जो इनकाउंटर करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के सुजाती लोग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 10 साल का आंकड़ा निकलवाइए जिन लोगों का फेक इनकाउंटर हुआ है, वो सब पीडीए के लोग हैं, जो करने वाले हैं वो मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आंकड़े और सर्विस की जो लोग पोस्ट हैं वो आंकड़े में देख रहा हूँ।
2: ये जो पार्टियाँ टूट रही है, किसका वन नेशन वन इलेक्शन से कोई ताल्लुक है इसका?
3: सोचना तो हमें ये चाहिए कि जो प्रधानी का चुनाव नहीं करा पा रहे, वो कह रहे वन इलेक्शन कराएंगे, और वन नेशन इलेक्शन इसलिए ये नारा दे रहे हैं जिससे डिलिमिटेशन वो पास कर दें, महिला आरक्षण वो ले आए, अपने हिसाब से पार्लियामेंट बना लें, अपना बहुमत रहे और विपक्ष की भूमिका कोई देश की राजनीति में न रहे।
2: कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे यूपी,
3: इंडिया गठबंधन और मजबूत करेंगे।
2: राजेंद्र गौतम को बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि कुछ एक संदेश है आपके?
3: देखिए
2: मायावती जी के लिए
3: नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैं पीडीए की ताकत, पीडीए का जनसमर्थन और जो पीड़ित दुखी हैं और जो अपमानित हो रहे हैं उन्हें सबको पीडीए के अंदर ला रहा हूँ। अगर कोई भी लगता है पीड़ित दुखी अपमानित हो रहा है तो हम पीडीए के लोग उनके साथ हैं।
2: रास्ते खुले रखे छोटी सी
3: नहीं, सबके साथ। देखिए जो गठबंधन हम लोगों ने अभी अभी किया था और 2024 में जिस पे रिजल्ट इतना अच्छा आया है, तो अब उस गठबंधन को और मजबूत करें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे गठबंधन कमज़ोर दिखाई दे।
2: कांग्रेस को सीख दे रहे हैं?
3: नहीं, मैं किसी दल को सीख नहीं दे सकता हूँ, कांग्रेस मुझसे बहुत जानकार पार्टी है।
2: तो बातचीत शुरू हुई है, अभी होनी है?
3: नहीं, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि जो रणनीति होगी वो बता नहीं सकते।

0: सुबह।
1: वाह मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आग प्योर मसाला।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर।
5: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
9: सरसो Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
11: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
10: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.
4: सरसों।
5: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
6: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
5: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: फिर हमारी स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी, हम लोग ऐसे आर्ग्यू करेंगे।
1: आशुतोष श्रीवास्तव वकील अपने आप को बता रहे थे लेकिन वैसा नहीं,
0: वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो मैं उनको जानता हूँ, लेकिन ये इसमें बहुत दिन से ये फैमिली मेरे कॉन्टैक्ट में है, इवन सिया भी मेरे कॉन्टैक्ट में है, मतलब पुलिस कस्टडी रिमांड के ड्यूरिंग कस्टडी रिमांड। हाँ, वकालतनामा हम लोग वी आर इन प्रोसेस ऑफ फाइलिंग वकालतनामा एज सून एज शी इज प्रोड्यूस बिफोर दी कोर्ट।
1: मजिस्ट्रेट कस्टडी की मांग करेंगे आपको?
0: हम लोग करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। हम लोग तो उल्टा ऐसा है, फैमिली का भी कहना ऐसा है कि आज तक सिया ने पूरी तरीके से पुलिस को कोऑपरेट किया है ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी रिमांड। इसके आगे भी अगर पुलिस को कुछ तहकीकात करनी है, जाँच करनी है, तो उसमें भी पूरी तरीके से कोऑपरेट करने वाले।
1: केतन अग्रवाल मौत मामले में आरोपी नंबर 2 यानी चेतन चौधरी को एडवोकेट शाह ने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज पुलिस कस्टडी खत्म हुई है और उन्हें कितने दिन की कस्टडी दी गई है और ये पूरा मामले आज में क्या डिस्कशन हुआ?
2: आज जो कस्टडी की मांग की थी पुलिस ने, वो जो उनके रीजंस थे रिमांड रिपोर्ट में मेंशन किए हुए, वो सेम थे जो पिछले रिमांड रिपोर्ट में मैंने रिप्रेजेंट किया था 2 में, वही कॉपी पेस्ट करके वो रीज़न थे, उसमें कुछ अलग बात नहीं थी। लेकिन ये कोर्ट में सरकारी वकील ने ऐसी दलीलें दी कि हमको एक माइनर ऐसी उनकी मांग थी कि पैंट जो है एक्यूज नंबर 2 का वो रिकवर करना था उनको, और दूसरा मोबाइल, हाँ मोबाइल के जो डेटा है मोबाइल का CDRO वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना था। तो हमारा आर्गुमेंट ऐसा था कि 7 दिन में फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या काम किया, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस इन द इन्वेस्टिगेशन। So they were prosecution was not able to mention the valid reason of that.
1: Time and being, sir, आप लोगों ने ये बात कही है कि just because चेतन वहाँ पर मौजूद था इसका मतलब ये नहीं कि उसने मर्डर किया, आप ऐसी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ और बताते हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या दलील?
2: No technical record is till date produced before the honorable court.
3: No technical record.
2: Till 7 days. No minute piece of evidence also is recorded.
1: तो क्राइम कैसे सिद्ध किया जाएगा कि चेतन उसमें इन्वॉल्व?
2: That is up to the prosecution. We can't comment on that.
1: केतन अग्रवाल मर्डर केस, बोथ द अक्यूज्ड सिया गोयल एंड चेतन चौधरी वर टुडे प्रेजेंटेड इन द वडगांव मावल कोर्ट, वेर इन टुडे अगेन दे वर सेंट टू अ 4-day पुलिस कस्टडी। आफ्टर द 7-day पुलिस कस्टडी एंडेड, बोथ ऑफ द अक्यूज्ड टुडे वर प्रेजेंटेड, वेर इन द पुलिस हैड स्टेटेड सेवरल ग्राउंड्स ऑन टू व्हिच द इन्वेस्टिगेशन वाज कैरिड आउट एंड फर्दर दे स्टेटेड दैट दे नीड ऑलमोस्ट 7 days of police custody to conduct further investigation, which includes that of crime recreation of the crime scene, taking Chetan to the spot and then recreating the entire crime. That is important. Other than that, the technical evidences needs to be studied again, is what the police stated. However, the defense from Chetan and Sia's end clarified that until now there have been almost multiple evidences that has already been collected, and what was exactly done in these 7-day police custody, that again a 7-day custody is required. However, after listening to both sides, it the court stated that both the accused will now be in a 4-day police custody until the 3rd of July. Now, based on the evidence that the police has collected so far, the circumstantial evidence, including the technical records, the call logs, the deleted WhatsApp chats, and the messages, have led to the police discover several of these claims. That includes that Sia and Chetan were in a relationship. Sia was unhappy with Chetan. She never really wanted to get married to Ketan. Despite clarifying this, Ketan had still told her that she cannot escape or elope with the situation, and the families that they come from with that background, they need to get married, and that is where Sia was not really agreeing to that part. And eventually, with her secret lover Chetan Chaudhary, she went on to plan, is what sources tell, and currently that is a part of investigation the court is hearing upon, and also that the prosecution as well as the defense need to prove, and henceforth the prosecution on one end is on to is also now agreeing and upon also investigating and arguing that it is somewhere that all of these records that are coming in public, they shouldn't really be considered as an evidence, and the police need to have some strong ground to prove that it was actually Chetan and Sia that committed the murder.
4: All right. So the police has extended the custody of Sia Goyal and Chetan Chaudhary. Let's now tell you the reasons for it and what is the next aspect that the police will be probing. First up, of course, custody extended till July 3rd. The police officials say that the custody has been extended because they need to verify fresh leads. Apart from that, establish sequence of events, because there are too many things that happened in the prelude before.

0: mention the valid reason of that.
1: टाइम एंड बींग सर, आप लोगों ने ये बात कही है कि जस्ट बिकॉज चेतन वहाँ पर मौजूद था, इसका मतलब ये नहीं कि उसने मर्डर किया, आप ऐसी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ और बताते हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या दलील?
0: नो टेक्निकल रिकॉर्ड इज टिल डेट प्रोड्यूस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट. नो
2: टेक्निकल रिकॉर्ड
0: टिल सेवन डेज. नो माइन्यूट पीस ऑफ एविडेंस ऑल्सो इज रिकॉर्ड.
1: क्राइम कैसे सिद्ध किया जाएगा कि चेतन उसमें इन्वॉल्व?
0: दैट इज अप टू द प्रोसिक्यूशन, वी कैन कमेंट ऑन दैट.
1: चेतन अग्रवाल मर्डर केस, बोथ द अक्यूज्ड सिया गोयल एंड चेतन चौधरी वर टुडे प्रेजेंटेड इन द वडगांव मावल कोर्ट, वेर इन टुडे अगेन दे वर सेंट टू अ 4-day पुलिस कस्टडी. आफ्टर द 7-day पुलिस कस्टडी एंडेड, बोथ ऑफ द अक्यूज्ड टुडे वर प्रेजेंटेड, वेर इन द पुलिस हैड स्टेटेड सेवरल ग्राउंड्स ऑन टू विच द इन्वेस्टिगेशन वॉज कैरिड आउट, एंड फर्दर दे स्टेटेड दैट दे नीड ऑलमोस्ट 7 days ऑफ पुलिस कस्टडी टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन विच इंक्लूड्स दैट ऑफ क्राइम रिक्रिएशन ऑफ द क्राइम सीन, टेकिंग Chetan to the spot and then recreating the entire crime. That is important. Other than that, the technical evidences needs to be studied again is what the police stated. However, the defense from Chetan and Sia's end clarified that until now there have been almost multiple evidences that has already been collected, and what was exactly done in these 7-day police custody, that again a 7-day custody is required. However, after listening to both sides, the court stated that both the accused will now be in a 4-day police custody until the 3rd of July. Now, based on the evidence that the police has collected so far, the circumstantial evidence, including the technical records, the call logs, the deleted WhatsApp chats and the messages, have led to the police discover several of these claims. That includes that Sia and Chetan were in a relationship. Sia was unhappy with Chetan. She never really wanted to get married to Chetan. Despite clarifying this, Chetan had still told her that she cannot escape or elope with the situation, and the families that they come from with that background, they need to get married, and that is where Sia was not really agreeing to that part. And eventually, with her secret lover Chetan Chaudhary, she went on to plan, is what sources tell, and currently that is a part of investigation the court is hearing upon, and also that the prosecution as well as the defense need to prove, and henceforth the prosecution on one end is on to is also now agreeing and upon also investigating and arguing that it is somewhere that all of these records that are coming in public, they shouldn't really be considered as an evidence, and the police need to have some strong ground to prove that it was actually Chetan and Sia that committed the murder. एडवोकेट, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि मामला पेचीदा होता जा रहा है, आज कोर्ट में पेशी है, क्या आपकी दलीलें रहेंगी?
3: नहीं, अभी वो आज का सब पुलिस का रिमांड रिपोर्ट वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स आने हैं, ये अभी उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते. वो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद फिर हमारी स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी, हम लोग ऐसे आर्ग्यू करेंगे.
1: आशुतोष श्रीवास्तव वकील अपने आप को बता रहे थे, लेकिन वैसा नहीं,
3: वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो मैं उनको जानता हूँ, लेकिन ये इसमें बहुत दिन से ये फैमिली मेरे कॉन्टेक्ट में है, इवन सिया भी मेरे कांटेक्ट में है, मतलब पुलिस कस्टडी रिमांड के ड्यूरिंग कस्टडी रिमांड. हाँ, वकालतनामा हम लोग वी आर इन प्रोसेस ऑफ फाइलिंग वकालतनामा एज सून एज शी इज प्रोड्यूस बिफोर दी कोर्ट.
1: मजिस्ट्रेट कस्टडी की मांग करेंगे आप?
3: हम लोग करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे. हम लोग तो उल्टा ऐसा है, फैमिली का भी कहना ऐसा है कि आज तक सिया ने पूरी तरीके से पुलिस को कोऑपरेट किया है ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी रिमांड. इसके आगे भी अगर पुलिस को कुछ तहकीकात करनी है, जाँच करनी है, तो उसमें भी पूरी तरीके से कोऑपरेट करने वाले.
4: And well, the investigation into the Chetan Agarwal murder case has uncovered what police believe is a chilling digital trail. Investigators claim that the accused researched murder methods on Google and YouTube as well before allegedly executing the plan at the Lohagarh Fort. Police now say that the victim's fiancé, Sia Goyal, knew in advance the exact location where Chetan was allegedly to be pushed.
5: An extensive internet search, secret gestures, and a premeditated plot to kill. The Chetan Agarwal murder investigation has revealed stunning details. Police claim the accused extensively searched Google and YouTube for different methods of murder before allegedly finalizing a plan to push Chetan off Lohagarh Fort. Investigators say the online searches included questions about whether a fall from a height would be fatal and which method of murder would carry the least risk of detection. Police believe these searches were part of the alleged planning leading up to the crime. According to investigators, Sia Goyal held a meeting before the incident. It was during this meeting, police claim,

0: 3 months back over the duration theft that was happening inside the temple. The outsourcing company was about to initiate the process of removing the counting staff, but trust officials came to their defense, as per sources. SIT has now recorded the statement of Champat Rai and will issue notices to Anil Mishra. In addition to that, statements will be recorded from several other individuals associated with the trust. The SIT probe into the Ram Temple donation theft has uncovered major leads, from the accused being allegedly deleting WhatsApp chats to formatting mobile phones and also destroying the digital evidence while attempting to dispose of the stolen funds.
1: SIT mein khud swikar kar rahe hain ke CCTV band kar kar ke jo chadhava aaya hai उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है. तो ये जो आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं. मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार सीसीटीवी ऑफ कर दें, लाइट बंद कर दें, कोई ना देखे, तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें. तो हमारे प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है, राम धन में अगर चोरी हुई है, रख दें दोबारा, तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ़ कर देंगे.
2: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है? क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है?
1: दोषी मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, मैं दोषी नहीं कहूँगा. लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों. और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है. और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जाँच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है? आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है? SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या SIT की भी जांच होगी? क्या SIT की जांच के लिए कौन संस्था होगी? फिर
2: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही निगरानी भी कर रहा है, चोरी भी वही कर रहा है?
1: जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने SIT बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि ये बात खुल गई है.
3: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो. ये धूल झोंकने का काम मत करो. एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो. अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है.
0: Well, the Ram Temple donation controversy has taken a fresh turn, with the Ayodhya Bar Association intensifying its stand against those accused in the alleged temple donation theft case. At a meeting, lawyers demanded that Champat Rai, Anil Mishra and Gopal Rai should leave Ayodhya within 3 days, warning that they would otherwise block the city. The Bar Association also resolved that no advocate would represent the accused in any legal proceedings and warned of action against lawyers who chose to take up their cases. The developments add another layer of pressure as the controversy over the alleged misuse of temple donation continues.
4: Bar ne aaj ye faisla liya hai ki SIT ka virodh kiya hai, ye jaanch CBI se honi chahiye. Dusra ye kaha hai ki jila adhikari sahab ko patra denge कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपक राय, नरेंद्र, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ, क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो है बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है, वो लोग लाए गए हैं. इसमें बड़ी चोरी हुई है, घोटाला भी बहुत है, निर्माण से लेकर के आज तक जाँच की जाए, इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी. नहीं करेंगे CBI के लिए, जहाँ तक जाने पर की स्थिति है वो उसी पैसे से

0: कि आप दलीलें दे रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल रिकॉर्ड है वो कुछ और बताते हैं, तो इसको लेकर भी क्या दलील?
1: नो टेक्निकल रिकॉर्ड इज टिल डेट प्रोड्यूस्ड बिफोर द ऑनरेबल
0: चेतन चौधरी वर टुडे प्रेजेंटेड इन द वडगांव मावल कोर्ट वेयर इन टुडे अगेन दे वर सेंट टू अ 4-day पुलिस कस्टडी आफ्टर द 7-day पुलिस कस्टडी एंडेड बोथ ऑफ द अक्यूज्ड टुडे वर प्रेजेंटेड वेयर इन द पुलिस हैज स्टेटेड सेवरल ग्राउंड्स ऑन टू व्हिच द इन्वेस्टिगेशन वाज कैरिड आउट एंड फर्दर दे स्टेटेड दैट दे नीड ऑलमोस्ट 7 days ऑफ पुलिस कस्टडी टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन व्हिच इंक्लूड्स दैट ऑफ क्राइम रिक्रिएशन ऑफ द क्राइम सीन टेकिंग चेतन टू द स्पॉट एंड देन रिक्रिएटिंग द एंटायर क्राइम दैट इज इंपॉर्टेंट अदर देन दैट द टेक्निकल एविडेंसेस नीड्स टू बी स्टडीड अगेन इज व्हाट द पुलिस स्टेटेड हाउएवर द डिफेंस फ्रॉम चेतन एंड सिया then clarified that until now there have been almost multiple evidences that has already been collected and what was exactly done in these 7-day police custody that again a 7-day custody is required however after listening to both sides it the court stated that both the accused will now be in a 4-day police custody until the 3rd of July now based on the evidence that the police has collected so far the circumstantial evidence including the technical records the call logs the deleted WhatsApp chats and the messages have led to the police discover several of these claims that includes that Sia and Chetan were in a relationship. Sia was unhappy with Ketan. She never really wanted to get married to Ketan. Despite clarifying this, Ketan had still told her that she cannot escape or elope with the situation and the families that they come from with that background, they need to get married and that is where Sia was not really agreeing to that part and eventually with her secret lover Chetan Chaudhary, she went on to plan is what sources tell and currently that is a part of investigation the court is hearing upon and also that the prosecution as well as the defense need to prove and henceforth the prosecution on one end is on to is also now agreeing and upon also investigating and arguing that it is somewhere that all of these records that are coming in public they shouldn't really be considered as an evidence and the police need to have some strong ground to prove that it was actually Chetan and Sia that committed the murder एडवोकेट सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि मामला पेचीदा होता जा रहा है आज कोर्ट में पेशी है क्या आपकी दलील रहेगी
2: नहीं नहीं अभी आज का सब पुलिस का रिमांड रिपोर्ट वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स आने हैं ये अभी अभी उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते वो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद फिर हमारी स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी हम लोग ऐसे आर्ग्यू करेंगे
0: आशुतोष श्रीवास्तव वकील अपने आपको बता रहे थे लेकिन वैसा नहीं
2: वो मुझे पता नहीं लेकिन वो मैं उनको जानता हूँ लेकिन ये इसमें बहुत दिन से ये फैमिली मेरे कांटेक्ट में है इवन सिया भी मेरे कांटेक्ट में है मतलब पुलिस कस्टडी रिमांड के ड्यूरिंग कस्टडी रिमांड हाँ वकालतनामा हम लोग वी आर इन प्रोसेस ऑफ फाइलिंग वकालतनामा एज सून एज शी इज प्रोड्यूस बिफोर द
0: मजिस्ट्रेट कस्टडी की मांग करेंगे आप
2: हम लोग करेंगे ना बिल्कुल करेंगे हम लोग को उल्टा ऐसा है फैमिली का भी कहना ऐसा है कि आज तक सिया ने पूरी तरीके से पुलिस को कोऑपरेट किया है ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी रिमांड इसके आगे भी अगर पुलिस को कुछ तहकीकात करनी है जाँच करनी है उसमें भी पूरी तरीके से कोऑपरेट करने वाले
3: Well, the investigation into the Ketan Agarwal murder case has uncovered what police believe is a chilling digital trail. Investigators claim that the accused researched murder methods on Google and YouTube as well before allegedly executing the plan at the Lohagarh Fort. Police now say that the victim's fiancé, Sia Goyal, knew in advance the exact location where Ketan was allegedly to be pushed.
4: An extensive internet search, secret gestures, and a premeditated plot to kill. The Ketan Agarwal murder investigation has revealed stunning details. Police claim the accused extensively searched Google and YouTube for different methods of murder before allegedly finalizing a plan to push Ketan off Lohagarh Fort. Investigators say the online searches included questions about whether a fall from a height would be fatal and which method of murder would carry the least risk of detection. Police believe these searches were part of the alleged planning leading up to the crime. According to investigators, Sia Goyal held a meeting before the incident. It was during this meeting, police claim, that Sia was allegedly told about the exact location at Lohagarh Fort where Ketan would be taken. Police allege Sia knew precisely where she had

0: had to stand and from which direction Chetan would approach before allegedly pushing Ketan into the valley. Investigators believe this points to prior planning rather than a spontaneous act. At the time of the crime, a secret gesture was also agreed upon between Sia and Chetan to push Ketan into the deep ravine. Sources say that Sia was to sit down in front of Ketan, either to drink water or to tie her shoelaces, which was Chetan's final signal to push Ketan. The deliberate reason behind Sia's sit-down gesture was to prevent Ketan from grabbing her to save himself while falling. Digital forensic experts are now examining the mobile phone seized from the accused. Police are attempting to recover Google and YouTube search histories, deleted chats, and any messages that may refer to the alleged murder plan or the specific location at Lohgarh Fort. With Sujata Dwivedi, NDTV Bureau Report.
1: A sensational new twist has now emerged in the Ketan Agarwal murder investigation. The driver who ferried Ketan and his fiancée Sia Goyal and their families to the Mumbai airport for a planned pre-wedding shoot in Bali has now made crucial claims that investigators are now examining. The driver alleges that Sia appeared reluctant to travel. She argued with her brother during the journey and then later returned alone to the parked vehicle at a food court before rejoining the group. Soon after reaching the airport, Ketan discovered that his passport was missing, forcing the cancellation of the Bali trip. Here's a report on the trip that never actually happened.
2: A new twist in the sensational Ketan Agarwal murder case. The driver who took Ketan, his fiancée Sia Goyal and their families to Mumbai airport for a planned Bali pre-wedding shoot has made explosive claims. Driver Vaibhav Jadhav claims Sia appeared unwilling to travel and that her brother Sahil held her hand and forced her into the vehicle after they left Pune. According to the driver, Sia and Sahil argued during the drive from Pune to Ravet. Later, Ketan Agarwal and members of his family joined the journey before the group continued towards Mumbai airport for the Bali-bound pre-wedding shoot. The driver says the group stopped at a food court for tea and snacks during the journey. It was here, he claims, that Sia returned alone to the parked vehicle, saying she had forgotten something. He alleges she removed certain belongings from the car and put them into her pocket before rejoining the others. After dropping the family at Mumbai airport, the driver says he received a call from Ketan informing him that his passport was missing. The passport was never recovered. Without the document, Ketan was unable to board the flight and the Bali pre-wedding shoot was cancelled. Ketan's father had also alleged sabotage.
3: जब उन किसी का पासपोर्ट गुम हो गया था वो बाली जाने वाले थे प्री वेडिंग शूट के लिए तब भी कोई शक नहीं हुआ सर कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें
4: सर गड़बड़ का तो शक हुआ लेकिन इस बात का नहीं हुआ ना क्योंकि केतन का ही पासपोर्ट सिया ने निकाल के फाड़ के फेंक दिया वो पता अब चल रहा है तब तो ऐसा हो गया था ना कि लॉस्ट हो गया
2: ही क्लेम्स ऑल पासपोर्ट्स Foreign currency, credit cards and important documents had been kept together in a single pouch inside the car. According to him, everyone received their passports at the airport except Ketan. He says Sia had returned alone to the car at the food court after claiming she had forgotten her mobile phone. Police now say their investigation suggests Sia deliberately mislaid Ketan's passport during the journey, derailing the Bali trip. The missing passport, a cancelled Bali trip, and the driver's latest claims have become crucial pieces in an investigation that continues to unravel. With Sujata Dwivedi in Pune, Bureau Report, NDTV.
1: Moving on to some other important stories that we're tracking on this edition, and this is about the ongoing probe into the Ram Temple donation theft. It has intensified now. Supreme Court will hear the matter after July 13th. As per sources, bank raised an alarm about 3 months back over the donation theft that was happening inside the temple. The outsourcing company was about to initiate the process of removing the counting staff, but trust officials came to their defense as per sources. SIT has now recorded the statement of Champat Rai and will issue notices to Anil Mishra. In addition to that, statements will be recorded from several other individuals associated with the trust. The SIT probe into the Ram Temple donation theft has uncovered major leads, from the accused being allegedly deleting WhatsApp chats to formatting mobile phones and also destroying the digital evidence while attempting to dispose of the stolen funds.
5: SIT mein khud swikar kar rahe hain ki CCTV band karke jo chahawa aaya hai उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है. तो ये जो आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं. मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार सीसीटीवी ऑफ कर दें, लाइट बंद कर दें, कोई ना देखे, तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें. तो हमारे प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है, राम धन में अगर चोरी हुई है, रख दें दोबारा, तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ कर देंगे.
6: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है? क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है?
5: दोषी मैं नहीं कह सकता, मैं विपक्ष पे हूँ, मैं दोषी नहीं कहूँगा. लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों. और अगर इस देश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पर इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है. और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जाँच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है? आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है. अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है? SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या SIT की भी जांच होगी? क्या SIT की जांच के लिए कौन सा संस्था होगी? फिर
6: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही निगरानी भी कर रहा
5: नहीं
6: है, चोरी भी वही कर रहा
5: है. जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने SIT बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि बात खुल गई है.
7: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो. ये धूल झोंकने का काम मत करो. एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो. अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है.
1: Well, the Ram Temple donation controversy has taken a fresh turn, with the Ayodhya Bar Association intensifying its stand against those accused in the alleged temple donation theft case. At a meeting, lawyers demanded that Champat Rai, Anil Mishra and Gopal Rai should leave Ayodhya within 3 days, warning that they would otherwise block the city. The Bar Association also resolved that no advocate would represent the accused in any legal proceedings and warned of action against lawyers who chose to take up their cases. The developments add another layer of pressure as the controversy over the alleged misuse of temple donation continues.
8: Bar ne aaj ye faisla liya hai ki SIT ka virodh kiya hai, ye jaan CBI se honi chahiye. Dusra ye kaha hai ki jiladhikari sahab ko patra denge कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपक राय, नरेंद्र अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ, क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो हैं बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है, वो लोग लाए गए हैं. इसमें बड़ी चोरी हुई है, घोटाला भी बहुत है, निर्माण से लेकर के आज तक जांच की जाए, इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी. नहीं करेंगे CBI के लिए, जहां तक जाने पर की स्थिति है वो उसी पैसे से जो वकला साहिबान जमा करेंगे अभियुक्तों से लेकर के उसी पैसे से प्रोसिक्यूट को प्रोसिक्यूशन की पैरवी।
6: वकील अगर मुकदमा लड़े तो?
8: मुकदमा लड़े तो लड़े, एप्लीकेशन देगा उसे अनुमति दे दी जाएगी। अगर वो पैसा इतनी बड़ी चोरी हुई इतने करोड़ों कई करोड़ों की तो 5 लाख रुपए पर हेड तो वकीलों को वो दे ही सकता है। वो वकील ला के हमारे यहाँ वकालत खाने में जमा करेंगे, जितने नाम ले जाने चाहते उतना नाम ले लें, उसी पैसे की प्रोसिक्यूशन पैरवी करेगा।
1: And with that, it's time for us to slip into a very quick commercial break. Don't go anywhere because news and updates continue right after a short break on NDTV.
9: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
10: This location from Tel Aviv
9: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
11: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
12: The Ayatollah Khamenei is gone.
13: There has been a missile attack right behind me
14: and we need to rush into a shelter.
15: Heading there.
16: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
9: And now, Aditya Raj Kaul covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
17: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: that there would be badnami, that the temple would get a bad name. But the fact is, the law wasn't followed. No FIR was registered. And that is the reason why now demands are gaining ground, that action be taken, not just against these eight people who have been arrested, but also Champat Rai. But while that probe continues, and investigators say more people could be brought into its ambit, the key question now remains, will this scandal dent the BJP? Because this is not just about the investigation, it's going to have a fallout as well. And will the BJP be sucked into that fallout? Will the elections be collateral damage for the ruling party? Or will the Saffron Party and Yogi Adityanath manage to dodge that bullet with their Mathura counter-strike?
1: बीजेपी और आरएसएस को आप बधाई दे सकते हैं, मुबारक दे सकते हैं. उन्होंने महमूद गजनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया. आपकी आंखों के सामने इतिहास नया लिखा जा रहा है, जहां भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोग 43 दिनों में 70 बार अयोध्या के प्रभु राम के मंदिर को लूट चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं.
2: वो तो कर तो ये छोटे छोटे पकड़ के कि रसोईया है, ये ड्राइवर है, ये इनकी औकात है, कितना पैसा गया है, इनकी औकात थोड़ी है. 16 करोड़ आदमी बता रहे हैं आप आते हैं एक साल के अंदर. अभी चल रहा है, चलने दीजिए, देखिए क्या करते हैं.
3: राम भक्तों के हत्यारों को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन जो भी मामला है उसकी जांच हो रही है. एसआईटी भी कर रही है, एफआईआर हो गई, पुलिस भी कर रही है. जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे.
4: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी.
0: Okay, let's take that question to the guest joining us today. Charu Pragya joins us from the BJP. We have political analyst Sajjan Kumar joining us along with senior journalist Ashutosh. But my first question is to Anurag Bhadauria of the Samajwadi Party, because Yogi Adityanath has said very clearly, Anurag Bhadauria, aap Ayodhya ki chinta mat kijiye. Aap, agar aapko dharm ki itni chinta hai, to aap Mathura ki baat kijiye. Mathura ko mukt karane ke liye ab aap campaign chhod dijiye. Wo aapse kar seva ki maang kar rahe hain, Anurag ji.
5: सवाल यह है कि अयोध्या को तो बचा नहीं पाए. अयोध्या 40 दिन में 70 बार वहाँ पे प्रभु राम के यहाँ चोरी होती रही, और सरकारें भी इनकी हैं, उसमें ट्रस्ट के लोग भी बीजेपी से संबंधित हैं, बीएचपी के हैं, उसके बावजूद भी वहाँ चोरियाँ होती रहीं. प्रभु के घर में चोरी, बीजेपी ने तो आवाज़ उठाई नहीं, आवाज़ तो समाजवादी पार्टी ने उठाई. और जब से इनकी सरकार आई तब से चोरी तो देखने को मिल रही है. मंदिरों में चोरी हो रही है, पेपर चोरी हो रहे हैं, जमीन चोरी हो रही है, जंगल चोरी हो रहे हैं, सरकारें चोरी हो रही है, एमपी एमएलए चोरी हो जा रहे हैं, विश्वास चोरी हो रहा है, और तो और खबरें भी चोरी हो जाती हैं. तो सवाल उठता है कि इनके यहाँ तो चोर, जब से ये सरकार आई इतना भ्रष्टाचार है, चारों तरफ चोरी चोरी देखने को मिल रही है. लेकिन ऐसा विश्वास हमें नहीं था कि प्रभु के घर में भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे, प्रभु के यहाँ भी चोरी करेंगे. वो तो कहो समाजवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, प्रभु के सच्चे भक्त हैं, आदर्श आचरण पर चलने वाले लोग हैं, वो तो हमने पकड़ लिया. नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो आई भी नहीं थी इतने दिन तक. हम लोग हल्ला मचा रहे थे कि चोरी हुई है, चोरी हुई है, तो बीजेपी गायब थी, बताइए, बोलने को भी तैयार नहीं थी. बीएचपी के लोग आते थे तो पता क्या बोलते थे, ये समाजवादी लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमारे जो करोड़ों हिंदू सनातनी उनको उनके विश्वास को आघात पहुंचा रहे हैं. तब भी हमने बोला था हम उनके विश्वास को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है वहाँ पे चोरी हुई है, हमें पता है वहाँ लूटा गया है, इसलिए समाजवादी ने प्रभु की आवाज़ उठाई है कि मंदिर लूटा जा रहा है. अब चूंकि वो उनकी पिच, जो मंदिर की पिच पे जो कहते हैं धर्म की पिच की बात करते थे लोग, अब इनका नकाब उतर गया है. चूंकि अब सब लोग जान गए ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं.
0: मथुरा
5: धर्म मेरी आस्था का विषय है, इनके लिए राजनीतिक विषय है. अब दूसरी पिच तैयार करने लगे, अब दूसरी पिच तैयार कर रहे हैं. उन्हें पता नहीं ये जो पिच थी, ये जो पिच इन्होंने बनाई थी, इसमें बारिश हो गई है. ये जो इन्होंने पिच तैयार की थी, अब इसमें स्विंग हो रही है बॉल, बॉल गुगली हो रही है, बोल्ड हो रहे हैं तो भाग रहे हैं. अब जो अयोध्या की पिच पे बोल्ड होने लगे, गुगली बॉल पकड़ने लगे, यहाँ पे गिल्ली उड़ने लगी, प्रभु के नाम पे इन्होंने जिस तरह से वहां पे लूटमार मची हुई थी हम लोगों ने पकड़ लिया, तो आप दूसरा मुद्दा लाने की कोशिश करें, मतलब गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं. अब वो पिच पे खेलने को तैयार ही नहीं हो रहे.
0: मथुरा
5: सवाल है कि हम समाजवादी लोग हैं, जहां जहां प्रभु के नाम पे चोरी होगी, जहां जहां प्रभु के नाम पे इस तरह का यहाँ दान पात्र में गड़बड़ी होगी, हम आवाज उठाएंगे. क्योंकि हम सनातनी लोग, हम बीजेपी की राजनीति नहीं करते.
0: चारू प्रज्ञा, विकास लुक, द थिंग इज दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज द गोल पोस्ट एंड समाजवादी पार्टी इज नॉट गोइंग टू फॉल इन दैट ट्रैप. एंड टू यूज अनुराग भदौरियाज एनालॉजी, उन्होंने आपकी पिच खोद दी, उन्होंने आपकी पिच खोद दी, तो अब आप बैट लेकर के यू हैव चेंज द स्टेडियम. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. Do you really think that bringing up Mathura is going to save you from the embarrassment of Ayodhya?
6: Padmaja, good evening to you, to my

0: alluding to?
1: No. Padmaja, again, I'm telling you, please listen to me carefully. Give me just another 20 seconds. I'm saying in 20th century, 21st century, I was expecting an egalitarian society, an egalitarian, a democratic debate and discourse. But again, the same exclusionary discourse is being thrusted on people like us, who have been critical of the BJP movement, and we are told, you are nobody to talk about Ram because it is our Ram. The similar thing was told to Sri Narayana Guru in Kerala. And you know what he said?
0: Okay.
1: He said, this is not your Shiva, this is my Shiva.
0: But, sorry, how did we bring in egalitarianism or exclusion, being exclusionary in this? I mean, if there is one thing that was very, very inclusive in this, is that everyone participated equally in whatever we've heard of this theft. From a Tinnu Yadav, there is also an Anukalp Mishra. It was a very equal opportunity theft, if I may say so. So, where is this whole exclusionary narrative coming in this? But yes, if you're talking politically... If you're talking politically, the moral responsibility of the Uttar Pradesh Chief Minister, just a second, I want to bring in Sajjan Kumar on this as well, because then we'll go into a very, you know, a very theological aspect of this whole debate. But the moral responsibility of the UP Chief Minister was there, and now he fears he is going to suffer political reverses. Can he walk away from this? Sajjan Kumar.
2: Yeah, of course, he will walk away from this, because we already see the outrage is as much within the devotees who are politically overwhelmingly oriented towards BJP. And people do see that it was something which was sectarian within the trust. So it is not that entire, what you call saffron discourse was complicit in this theft. This is one. Two, there were procedural lapses and there were deliberate procedural lapses. But more than that, there was cases of moral abdication wherein the trustees, many of them should have resigned on their own when the matter came to the public knowledge, and they didn't do. So the anger is there. Now the question is, the anger is very much specific to the trustees who failed in their responsibilities, right? Now every citizen of India, every devotees have a right to criticize and demand action, right? But to say that the ones who never had conviction about the Ram temple are exhibiting the same intensity of outrage, that doesn't seem very persuasive and convincing. So it seems a case of outrage without conviction. This is one. Two, when opposition like Samajwadi Party, who have a tainted past on the question of Ram temple movement and construction, when they also start pretending that they care for the devotee's sentiment, the question would be that are you on the slippery slope if you care for Ram temple? Had you just said that you are bothered about the corruption, not about the religious anger, it would have made sense. Had you said that you are bothered about many of the public morality, it would have made sense. The moment you link yourself as the champion of Sanatanis, will you tomorrow also champion all the causes that Sanatanis hold dear and wants a solution through political realm, which BJP champions? Will you go? And that is why the question is very bona fide, that will you also champion the demand of Kashi and Mathura?
0: Okay, everyone responding to you. Outrage without conviction. Ashutosh first and Anurag Bhadauria. Outrage without conviction.
1: See, again, it's very patronizing. I'm sorry, Adesh, Sajjan, if I heard you rightly. It's very patronizing. In Hindu religion, there is no one kind of Sanatan. There is no one kind of Hindu discourse. Somebody who doesn't even believe in God and Vedas, even they are also Hindus. That's what the Charvak is all about. That's what Ajivika is all about. You are trying to tell us that this is a kind of Sanatan. If you don't pursue that kind of Sanatan, then you are not a Sanatan. I think that shows the people have so little.
0: No, but Ashutosh, that's not what he's saying at all. He is saying that you should display the same kind of conviction in other issues.
1: How do you know?
0: Which are central. There are some things which largely have been accepted as central to the Hindu faith, and Kashi, Mathura, Ayodhya has been one of them.
1: No.
0: People who have not showed that kind of conviction about these three things outraging today seems a little disingenuous. I think that's his argument.
1: Padmaja, you tell me, if I don't go and visit Ram temple, I'm less Ram Bhakt. Hamare yahan to kaha gaya na,
0: charu pragya.
3: Can I respond to that? I think, Ashutosh ji, your anger is very misplaced because I think you're deliberately missing the point that Sajjan ji is trying to make, and let me repeat it for you.
1: What kind of this discourse?
3: I'll tell you what the discourse is, and it's obvious you're missing the point, and you're missing the point because you do not understand Sanatan at all. That's why no matter how hard we try, you're not going to understand what we're trying to say here. You want to champion the cause of Hindus, but you want to do it politically and selectively. You don't want to do it in a way that Hindus would expect you to, and that is our question to you. I raised it, Sajjan ji raised it. So you cannot be championing the cause of Hindus waking up overnight when it comes to Ayodhya, but still refuse to say a word about Krishna Janmabhoomi and Mathura. Why are you doing that? Talk about Krishna Janmabhoomi too. Today you are concerned about Bhagwan Shri Ram, but I didn't see you protesting when all kinds of derogatory statements were made during the Pran Pratishthan. That cannot be the stand, right? It's not about whether you go to the temple or not. Not at all. And I agree with you. It's not compulsory to go to the temple. But whether you take a stand for the Hindus or not cannot have a grey answer. That's what we are saying. Either stay in the black or come into the white and do it with
0: 30 seconds. Ashutosh, respond, then I'm coming to Anurag Bhadauria.
1: You know, Padmaja, what Kabir has said? पहाड़ पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ वाते तो चाकी बली पीस खाए संसार आकर पाथर जोड़कर मस्जिद गई चिनाए ताचोड़ मुल्ला बाग के क्या बहरा हुआ खुदा है। आज हमको बताया जा रहा है कि आप मंदिर नहीं जा रहे तो आप राम भक्त नहीं, आप सनातनी
3: नहीं। अरे भाई, ये मैंने बोला ही नहीं। आई सेड द नॉलेज अबाउट
1: Kabir Hinduism and Tulsi's Hinduism, these are two different things.
3: Now, anyways, I'm not answering to you. The viewers have heard you and me.
1: You are trying to tell us that what RSS is telling us, that is the only way.
3: I said the exact opposite.
1: I only pity. I really pity.
3: Did he not hear anything I say at all?
1: And Sanatan. And they are trying to impose on others and trying to give a certain.
3: My God, Ashutosh ji, you're making. I am sorry. You're a senior person, but you cannot be quoting me exactly 180 degrees opposite to what I have just said. Did you not bother to hear me? Maybe you should play the recording of this show.
1: Charu Pragya, I'm only saying somebody who has not gone to Ayodhya. If you are
3: exactly
1: to
3: what
1: tell
3: I
1: that
3: said.
1: You are not Ram Bhakta, Ram Sapata, I think you are grossly mistaken.
3: No,
1: that is what the political discourse BJP wants in
3: my
1: this
3: God,
1: country.
3: My God, there is really no point in arguing with this.
1: Majorly failed.
3: Like
1: the Yogi
3: Adityanath again.
1: Has to take the
3: Ashutosh
1: moral.
3: Ashutosh ji, you have not heard a word of what I said.
1: Protect Lord Ram.
3: I was the first one to say going to the temple is not necessary.
1: I am going to the extent.
3: But if you are talking about Parvat ki Pooja and Hari ki Pooja, then you are not doing any Pooja.
1: I am going to that extent.
0: Okay, you know, the thing is, nobody is asking for a certificate of devotion by people going and visiting a temple. But when you have gone out of your way, Samajwadi Party has also seen people like Swami Prasad Maurya who have gone out of their way to insult this very faith, and people have remained quiet, which is why you look back and you look at those precedents. And the question is that one side, Anurag Bhadauria, when you are talking about religion, when you are talking about people's faith, then the first thing comes to mind is people. आपको याद दिलाएंगे एक तरफ है स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपकी पार्टी में हुआ करते थे और दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ जैसे कि सज्जन कुमार ने बोला एट द एंड ऑफ द डे इज अ सैफरन वेयरिंग मंक. अब उनको कोई देख ले कि वो धर्मद्रोही हैं ये उन पे चिपका पाना बहुत मुश्किल होगा.
4: देखिए सवाल यह है कि सनातन की बात हो रही थी. सनातन क्या सिखाता है? सत्य बोलने की बात करता है, सबको अपनाने की बात करता है, प्रेम की भाषा सिखाता है और कर्म जो हमारा होता है उसको प्रधान माना जाता है. तो हम वही तो कर रहे हैं समाजवादी लोग. हम सत्य बोल रहे हैं. हमने कहा कि प्रभु के मंदिर में यहाँ चोरी हुई है, बाद में SIT हुई, पता भी चला, पैसे भी मिले कि यहाँ चोरी हुई है. हम प्रेम की भाषा बोलते हैं, हम सबको अपनाने की बात करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, सबको तो अपनाने की बात करते हैं. वसुदेव कुटुंबकम की बात तो करता है सनातन. और कर्म की बात होती है तो हम तो हमारे जो कर्म है हम वही तो प्रधान है ना. हम क्या कर रहे हैं? हम समाज के अंदर में समाज को जोड़ने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, मेट्रो की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसानों के भले की बात करते हैं, महिला समस्या के समाधान की बात करते हैं. और हम क्या करते हैं? यही तो समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं और प्रभु के यहाँ पे हो रही चोरी को बचाने का काम करते हैं. तो बताइए प्रभु किसके साथ खुश होंगे?
0: बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कही, आपने कहा कि सनातन सनातन ये कहता है कि सबका सम्मान करो, सबको साथ लेके चलो। आपके ही तो नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने तो कहा था रामचरित मानस के ऊपर बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि रामचरित मानस जो है वो इंसल्टिंग है, वो गलत है, वो घृणित है। आप ही के तो नेता थे, तब सम्मान और सनातन की बात किधर गई थी?
4: हाँ थे, सुन तो लीजिए भाई, आप बोल तो दिए, सवाल पूछ लिए, जवाब सुन लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? थे, गए क्यों? क्योंकि वो सनातन का अपमान करते थे, गए। और भारतीय जनता पार्टी तो उनको ऐसे जो सनातनों के हमारे धर्म के बारे में खिलाफ बोलता है उनको तो अपनी पार्टी में लेती है।
0: नरेश अग्रवाल की बात करें,
4: याद है अग्रवाल जी, नरेश अग्रवाल जी ने क्या बोला था?
0: नरेश अग्रवाल तब तो आपकी पार्टी में थे ना, जब उन्होंने राम में रम को ढूंढा था, अरे अब तो वो आपकी पार्टी में थे ना
4: भाई। मेरी बात तो सुनिए, आप बीच में टोकेंगे तो ठीक नहीं है। आप रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। आपने सवाल पूछा, जवाब दे रहा हूँ। नरेश अग्रवाल जी को किस पार्टी में लिया बाद में, जो प्रभु को विस्किम कहाँ कहाँ खोज रहे थे, मैं बोल भी नहीं सकता था। यही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया ना, जो प्रभु का अपमान करते थे और उनकी बेटे और उनको बेटे का रम का मंत्री भी बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में। और एक मिनट रुकिए ना, और मत कीजिए। यहाँ पे जो इनके मंत्री निषाद जी, संजय निषाद, क्या कहते थे? प्रभु दशरथ के बेटे नहीं है, राम दशरथ के बेटे नहीं है, और वो मंत्री हैं इनके यहाँ। कमाल, ये टेस्ट ट्यूब भी बताते थे। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी प्रभु के बारे में बोलेगा उसको तो ये लोग ले लेते हैं अपने साथ। तो भारतीय जनता पार्टी का आप चेहरा साफ हुआ है, उनका जो नकाब था उतर गया। राम मंदिर में चोरी की जगह ये समाजवादियों ने उतारा, समाजवादियों के चेहरे से नकाब खींच लिया, उनका असली चेहरा सामने आ गया कि वो उनको प्रभु से कोई लगाव नहीं है, उनको धर्म से मतलब नहीं है, धन से मतलब है। किस तरह से धन वहां पे लिया जाए, किस तरह से वहां लूट मारो। अरे ये जो समाजवादी ने उठाई बात, तो ये बीजेपी को उठानी चाहिए।
0: बिल्कुल, देखिए प्रभु राम के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में, लेकिन सज्जन कुमार द फैक्ट ऑल्सो रिमेन्स दैट इलेक्टोरली स्पीकिंग देयर हैज बीन ट्रबल फॉर द बीजेपी इन दिस पर्टिकुलर रीजन। इफ यू जस्ट लुक एट अवध इन 2019 ऑफ द अबाउट व्हाट 24 seats which are in the Awadh region, of which Ayodhya Faizabad is also a part. In 2019, the BJP had swept this area. All 24 seats had gone to them. Cut to 2024 and the India bloc got 13 out of those 24 and the BJP was less than half at only 11. Will this not add to the BJP's headache? This entire Ram temple fiasco.
2: No, I mean, of course, you have two set of voters. One voter which votes for you enthusiastically, despite having bona fide opposition. Second scenario is when you have a sense of grudge with the incumbent, that is BJP, and the region is certainly n number of things but Ram Temple. It may be the caste community representativeness, intra upper caste rivalry, upper caste versus OBC rivalry, etc. These equations are there that may trouble, right? But nevertheless, you need a bona fide opposition who is more relatable and attractive to you. Now, see the case of Maharashtra. Two states that accounted for BJP absolute loss, wherein BJP lost majority on its own, were Maharashtra, 48, it won 9, and then UP, wherein it was in 32, 33 seats, right? Now, we have seen what happened in Maharashtra. Within 3 months, BJP swept it on its own, swept Maharashtra from Vidarbha to Marathwara to Paschim Maharashtra to Konkan, all the regions. Similarly, from 2024, which was the zenith of Samajwadi Party, thereafter, what is the plank that Akhilesh Yadav has championed? He still is trying, one, to champion PDA, Pichra Dalit Alpsankhyak, right? We do know that on the question of Pichra, except for the Yadav community, majority of non-Yadav still are represented overwhelmingly more by the BJP. On the question of Alp Sankhyaks, they have to resolve it within India alliance. You know, as far as Dalits are concerned, still Mayawati, despite being written off, is sitting on around 10% of the votes. So that way, while BJP may face certain grudging vote from the core base, a repeat of 2024 is unlikely because we have seen the same sort of precedent in Maharashtra. It didn't happen. Two, the voters may go to Akhilesh Yadav, but that cannot be on the plank of Ram Temple embezzlement issue. Why? Because I, as a devotee, may have grudge, may have anger, may be disturbed by this episode, but to say that I will cross the Rubicon and vote to a party that since 1990 has consistently either attacked Ram Temple movement or has remained. Where was the outrage when Udayanidhi Stalin said that Sanatan is dengue? Where was that outrage?
0: Ashutosh.
2: Where was the outrage when consistently they are being attacked? So you cannot be a Sanatani and keep on endorsing the ones who are attacking and demonizing and denigrating the Sanatan
0: okay.
2: as a whole.
0: Aapki history aapke khilaaf hai. Aapki history aapke khilaaf hai. Anurag Bhadauria, phir Ashutosh.
4: Jawab de. देखिए कमाल की बात है, हम प्रभु के आस्था की बात कर रहे हैं, ये राजनीति की बात कर रहे हैं. हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे ना इस पे. हमें हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते. हमने तो वहाँ पे चोरी हो रही थी दान पात्र में, ये बात बताई है, ये जनता के सामने रखा है कि वहाँ चोरी हो रही है और आप उसमें राजनीति खोज रहे हैं, किसको वोट कौन सा जाएगा, किसको वोट किसके मिलेगा. अरे धर्म, ये धर्म पे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हम नहीं करते हैं. हमें कभी देखा धर्म के नाम पर वोट मांगते हुए? कभी आपने देखा कि हम वोट मांगते हैं तो एक्सप्रेसवे पे मांगते हैं, वोट मांगते हैं तो हमने मेट्रो चलाई उस पर मांगते हैं, हमने स्टेडियम बनाया उस पर मांगते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाया उस पर मांगते हैं, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई उस पर मांगते हैं, हमने लैपटॉप दिया उस पर मांगते हैं, पार्क बनाए उस पर मांगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलपमेंट.
0: चारू प्रज्ञा, ये वोट के लिए, राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ श्रद्धा के लिए, सनातन के लिए, आस्था के लिए, हर्ट फीलिंग्स के लिए कर रहे हैं.
4: नहीं नहीं, प्रभु के मंदिर में चोरी हुई तो वो बात मैंने उठाई क्योंकि वो मेरी आस्था का विषय था, मेरे हमारे आस्था पे चोट पहुंच रही थी, इसलिए हमने वो बात उठाई, उजागर किया प्रभु के.
0: जब उदयनिधि स्टालिन इसी सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहे थे तब आपकी आस्था पे चोट नहीं लग रही थी?
4: वो स्टालिन तो अच्छा बताइए, भारतीय जनता पार्टी बता दे स्टालिन को अपने साथ नहीं लेगी डीएमके को, आज ही बोल दे, बीजेपी प्रवक्ता बोल दे मैं डीएमके के डीएमके पार्टी को अपने साथ एनडीए में कतई नहीं शामिल करूं.
0: अरे सर, अपनी चोटिल आस्था का थोड़ा सा इतिहास भी तो बताइए. आज आपकी आस्था इतनी चोटिल है, उस वक्त हुई थी कि नहीं हुई थी?
4: मैंने भारतीय जनता पार्टी
0: राजा ने उसके खिलाफ बात की थी, जब स्टालिन ने उसके खिलाफ बात की थी,
4: साथ भी सरकार बनाएगी, पीडीपी के साथ भी सरकार बनाएगी, जिसको अलगाववादी पार्टी बोलती थी उसके साथ भी सरकार बना लेगी, मुस्लिम लीग के साथ भी सरकार बना लेगी.
0: okay.
4: क्या मलाई खाना होता है वहाँ?
0: okay, चारू पे क्या रिस्पॉन्ड?
4: और जहाँ मलाई नहीं मिलती है वहाँ पे धर्म की राजनीति सुन
0: रहे हैं.
3: Done. Yes. And if it is about accountability, then there cannot be two sides to this debate at all. If Anurag ji ki aastha itni strong hai, to us aastha ke naam par abhi Krishan ji ka bhi naam le de aur Krishan Janmabhoomi ko bhi support kar de. Kyun nahi support kar pa rahe? To bhai aastha selective ho sakti hai kya? Mera to straight sawal aapse ye hai. Aur agar aap yahan par accountability ki baat kar rahe hain. Prabhu ko maanne wale
4: log hai, kamal ki baat kar rahe hain. Jawab le liye.
3: आप स्पेसिफिक्स में बोलिए. हम कृष्ण जन्मभूमि मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं.
4: न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं हम, देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं अम्बे हमारे बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान को मानने वाले लोग हैं. संविधान और न्यायपालिका जो कहता है हम मानते हैं, वो उसके साथ मेरा धर्म मेरा आस्था का विषय है. दोनों को जोड़िए मत, ये गलत कर.
3: He has proved it himself. The minute you start questioning his आस्था, he's going to
4: चलता है. लेकिन
3: don't speak over me, अनुराग जी. अनुराग जी मोनोलॉग नहीं है. I'm going to wait for him to finish.
0: Okay. वैसे जब भी आपकी आस्था पे चोट लगती है, मैं एक फिर से एक बार याद आ गया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की इतनी लंबी लिस्ट है, that some of them are actually skip my mind. January 27, 2023, here's what he said. इन संतों महंतों धर्माचार्यों व जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी महाशैतान या जल्लाद? हमेशा उनके बहुत ही उच्च विचार रहे हैं अबाउट पीपल फ्रॉम अ सर्टेन कम्युनिटी. बट एनी वे, लेट मी ब्रिंग इन आशुतोष एज़ वेल. लेट मी ब्रिंग इन आशुतोष एज़ वेल.
4: चले जाए वो, आप उनसे पूछिए पद्मजा जी, अगर आपका एजेंडा चल गया हो तो मेरी पार्टी में नहीं है, कान खोल के सुन लीजिए. उसमें तेल
0: सर, उस वक्त आपकी पार्टी में थे,
4: हमारी पार्टी
0: उस वक्त आपकी पार्टी में थे जब उनको संत महंत जल्लाद और महाशैतान दिखाई दे रहे थे, उस वक्त आपकी पार्टी में थे. बट व्हाट डू यू से टू सज्जन कुमार एनालिसिस आशुतोष, दैट पीपल मे वांट टू मूव टू द समाजवादी पार्टी, बट इट विल डेफिनेटली नॉट बी अ रिजल्ट ऑफ दिस सेलेक्टिव आउटरीच, बिकॉज हिस्ट्री does go against parties like the SP when it comes to this particular issue.
1: See, Padmaja, I will not make any prediction right now because elections are still far away, and we have a history of what happened in Tamil Nadu. Suddenly everybody thought the DMK is going to win, and suddenly somebody like Vijay comes in and he wins elections. Like Arvind Kejriwal in 2015, he won with 67 seats out of 70. Who had thought and who had predicted that when the Narendra Modi was at the peak of his popularity, BJP will get only 3 seats. So let's not get into that. It's too early to predict anything about UP right now. Yes, I agree that BJP is on a strong wicket, but to underestimate Samajwadi Party in UP, especially after 2024, I think that's not advisable. I just want to comment on one small thing about the Tamil Nadu. See, this is the same BJP which had a relationship with the DMK. And I'm not talking about what Dayanidhi Stalin has said about Ram. That's condemnable and it should not be there. But anybody who understands the DMK politics and ideology, who has read Periyar, knows fully well what Periyar thought about Ram and the kind of things were done in Tamil Nadu. So BJP had no problems having a truck with DMK forming government because at that point of needed. And can anybody from the BJP today say that they will never have any kind of relationship, neither directly nor indirectly, with DMK in future ever because Dayanidhi Stalin has said something wrong about Sanatan?
0: But Ashutosh, can they say it on record? Not being asked of Udayanidhi Stalin or the DMK for what they said. It's being asked of people who today are claiming that they are hurt but didn't show any sense of hurt and rubbed shoulders with the DMK after these comments had been made. Surely there is some dissonance there, right? And even the voter is going to see through that dissonance. When Anurag Bhadauria goes to the voter and says, BJP is anti-Sanatan, BJP is anti-Ram Mandir, then that voter will say, but you didn't seem very concerned about Ram Mandir or Ram.
1: Padmaja, see, I think a lot of emphasis has been given on the ritualism. Hinduism is not exactly about ritualism. Let's face it.
0: Okay.
1: Where will you play Shankaracharya? Shankaracharya has never talked about rituals. But Ramanacharya has talked about rituals.
0: But sir, we are not even talking about ritualism. One is talking about outright disrespect.
1: You are not giving chadhavas, you are not Ram.
0: You're talking about outright disrespect. If your leader is going to call names to the Ramcharitmanas, if you're going to abuse the saints and seers and you keep quiet, then that kind of selectivism shines through.
1: No. Again, I'm saying, is there one kind of Ram story in this country?
0: Okay.
1: There are more than 100. Which one is authentic? So you might have a disagreement on that. I might have a disagreement on that.
0: Absolutely.
1: Buddhism has a different Ram story. Jainism is a different Ram story. You go to Himachal, there's a different Ram story. You go to Tamil Nadu, there's a different Ram story.
0: Sure. So I mean, BJP wants to monopolize the Ram story. Our interpretations of what is the real version of the Ramcharitmanas of the Ramayan. But I think we can draw the line at calling seers and saints Mahashaitan and Jallad. I think the meaning of that is pretty clear to whoever is watching. I'm going to leave it at that because, like we said, one part is the investigation. And on that, without a doubt, there should be the full truth coming out. And the other, though, is the politics, which only promises to get more interesting. Congress delegation going to Ayodhya tomorrow. For the time being, though, all gentlemen, Charu Pragya, thanks very much for joining me. All right, so what is going to be the Samajwadi Party's strategy from here on? We caught up with Akhilesh Yadav himself in conversation with NDTV's Manoranjan Bharti. Listen.
5: यूपी में बहुत कुछ चल रहा है राम मंदिर को लेकर के और चढ़ावा को लेकर चढ़ावा
6: चोरी ये बहुत गंभीर विषय है और करोड़ों करोड़ों सनातनी जो लोग हमारे धर्म में आस्था रखते हैं और जिन्हें हमारे श्रद्धा है और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी सनातनी या कोई भी इस तरह का राह हो जो भगवान प्रभु श्री राम के पक्ष में ना हो लेकिन जो खबरें आ रही हैं जो सूचनाएं आ रही हैं जो जानकारी मिल रही है और सरकार ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि वहाँ पर इस तरह की घटना घटी है और SIT की रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं SIT में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि CCTV बंद कर करके जो चढ़ावा आया है उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है तो ये जो आस्था के साथ हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार CCTV ऑफ कर दें लाइट बंद कर दें कोई ना देखे तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें तो हमारे प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है, राम धन में अगर चोरी हुई है, रख दें दोबारा तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ कर देंगे।
5: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है? क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है?
6: दोषी मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, मैं दोषी नहीं कहूँगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों। और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है? और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जांच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है? आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है? SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या SIT की भी जांच होगी? क्या SIT की जांच के लिए कौन संस्था होगी फिर?
5: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही वही निगरानी भी कर रहा है, चोरी भी वही कर रहा है।
6: जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने SIT बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि ये बात खुल गई है। और केवल ये नहीं खुली, सुनने में आया है कि जो अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं,
5: आपने कहा कर्नाटक से तार जुड़े हैं, वो कैसे?
6: मैं नहीं कह रहा हूँ, एक एक अयोध्या वासी जानता है कि कुछ चढ़ावा कर्नाटक तक जाता था, और सुनने में ये आया है कि अंडरग्राउंड और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, संगी साथी, जो चुनाव के मैनेजमेंट रखते थे, जो चुनाव में जगह जगह पर लोगों को भेजते थे, जो फर्जी वोट भेजा जाता था, उसके वो हेड थे, वहाँ तक कुछ चढ़ावा पहुँचा है।
5: तो आप इसको SIR से जोड़ के देख रहे हैं, चुनाव से जोड़ के?
6: नहीं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो पूरे देश में वोट का मैनेजमेंट करते थे, तो उत्तर प्रदेश के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम वो आए तो हम उनसे सवाल तो करें।
5: मुख्यमंत्री ने कहा है कि आइए चलिए मथुरा चलते हैं, कृष्ण मंदिर बनाते हैं, आपके कार्यकाल में नहीं बन पाया कृष्ण मंदिर।
6: नहीं भाई, प्रभु श्री राम के यहाँ चढ़ावा चोरी कर लिया, माखन चोर जिन्हें बोलते हैं उनका भी चढ़ावा चोरी करने का इरादा है क्या आपका? तो आप कहाँ कहाँ चोरी करना चाहते हैं भाई? आपको पहले अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी है, आप अपनी क्रेडिबिलिटी तो साबित करें, इधर उधर की बातें ना करें। पूरा देश जानना चाहता है कि चढ़ावा कहाँ गया है, और जब CCTV में वो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है।
5: नारा भी दिया है आपने कुछ?
6: नहीं, मैंने नारा ये दिया कि भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है।
5: एक और मुद्दा है जो जिसके लिए आपने बहुत इस पे किया, पेपर लीक और जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर, पेपर लीक कैसे रुकेगा?
6: देखिए, पढ़ाई आसान हो, पढ़ाई में परीक्षाओं में आसान तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए, सरकार को कम से कम ये निश्चित करना चाहिए पेपर लीक ना हो, परीक्षाएं रद्द ना हो। और इसलिए क्योंकि बहुत सारे नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है, और भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और आज के समय पर अगर हम ये नहीं तय कर सकते कि परीक्षा कैसे होगी, तो आज टेक्नोलॉजी है आपके पास, और अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए नीट का परीक्षा का इतना पेपर लीक हुआ, करोड़ों लोग परिवार जुड़े थे, उन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, दोबारा उनको एग्जाम लिखने लगा।
5: आपको लगता है ये नेशनल इशू है और इंडिया गठबंधन?
6: नहीं, ये BJP के लिए इशू है, ये BJP को सीरियस लेना। जब आप विकसित भारत अमृत काल की बात कर रहे हैं और आपके यहाँ पेपर लीक हो रहा है, आप दुनिया के में वर्ल्ड इकोनॉमी के वर्ल्ड फोरम पे ही आप जाते हैं, और आपके करोड़ों परिवार इस बात के लिए परेशान है कि आप पेपर नहीं करा पा रहे हैं। आप दुनिया के प्लेटफॉर्म पे खड़े होना चाहते हैं, लेकिन आप एक सामान्य पेपर नहीं करा पा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। आप एयरफोर्स से क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं, क्या दुनिया में ये उदाहरण बनेगा हमारे भारत का?
5: पिछले दिनों एक अग्निकांड हुआ यहाँ पे, उसके बाद आपने बहुत कुछ कहा, उसको भ्रष्टाचार से जोड़ा है।
6: देखिए, जो बच्चों की जान गई है लखनऊ में, जो बच्चे बच सकते थे, हमारे अगर फोर्स को सही इक्विपमेंट मिलते, ट्रेनिंग अच्छी होती, तो शायद वो दीवार तोड़ देते, और समय पे दीवार तोड़ देते तो सफोकेशन से मरते नहीं। जलने वालों की संख्या कम है जबकि सफोकेशन से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो ये दोषी कौन है? दोषी तो सरकार है ना इसके लिए। सरकार आखिरकार भ्रष्टाचार कर रही थी, और भ्रष्टाचार इसलिए कर रही थी क्योंकि नियमों का पालन नहीं करना है उन्हें।
5: आपने क्यों कहा कि 2027 का चुनाव अंतिम होगा?
6: मैंने अंतिम इसलिए कहा, बंगाल का चुनाव देखने के बाद सेंट्रल फोर्स से आप चुनाव लूट लेंगे, आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, आप ईडी सीवे इनकम टैक्स लगा देंगे। कभी हिटलर ने भी यही किया था, हिटलर ने उस समय के अपने जर्मनी के पार्लियामेंट में जो कानून अपने लिए पास करना था फोर्स लगा करके कानून पास कर दिया था। ये 60-70 साल पुरानी बात है और मुझे तो लगता है यही दोहराना चाहते हैं। बंगाल में चुनाव हुआ, क्या हुआ, आप ये नारा दे रहे थे 400 पार का और जनता ने समझ लिया कि आप वोट के अधिकार पाने के बाद वोट से आप संविधान बदलेंगे, जनता ने उन्हें नहीं जीतने दिया। जो वोट से नहीं कर पाए वो अब सांसद खरीद के करना चाहते हैं। तो आप सांसद को क्यों डरा रहे हो?
5: जिस तरह से टीएमसी टूटी, शिवसेना टूटी, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पर भी नजर रहेगी उनकी?
6: नहीं, हमारी इसलिए नहीं टूटेगी, हमारी पीढ़ियों से जुड़े लोगों की पार्टी है। और फिर क्या हमारे टूटने के बाद ही गिनती पूरी होगी? बीजेपी इतने गेम खेलते हैं, उन्हें गिनती पता है, उनको गिनती क्या चाहिए। लेकिन मैं तभी तमाम सांसदों से कहना चाहता हूँ कि अगर ये बिल पास हो गया जो महिला आरक्षण के साथ साथ डीलिमिटेशन का जो बिल पास हो रहा है, उसके बाद बहुत सारे सांसद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो आज बिल पास करेंगे भविष्य में वही नहीं चुनाव लड़ पाएंगे, इसलिए अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचें।
5: आपके ममता बनर्जी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, आप गए भी कलकत्ता, आपके डीएमके से भी अच्छे रिश्ते हैं, क्या आप चाहेंगे डीएमके इंडिया गठबंधन में आए, कुछ कोशिश करेंगे?
6: नहीं, मैं डीएमके के सभी नेताओं से बड़े अच्छे संबंध हैं और डीएमके का जो इशू है वो जेन्यून है। मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो जो हमारा कंसर्न था, जो हमें अपनी बात कहनी थी उस प्लेटफॉर्म पे मैंने कही, और वो उस बात को अगर सब मानेंगे, रीजनल फोर्सेस की, रीजनल पार्टीज की अपनी बातों को सम्मान के साथ अगर बड़े दल स्वीकार करेंगे तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा।
5: आपने कहा कि इनकाउंटर और जितने भी बुलडोजर चले हैं उसमें अधिकतर पीडीए के लोग,
6: जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, घर पीडीए के टूटे हैं, इनकाउंटर फेक पीडीए के हुए हैं, और जो इनकाउंटर करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के सुजाती लोग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 10 साल का आंकड़ा निकलवाइए, जिन लोगों का फेक इनकाउंटर हुआ है वो सब पीडीए के लोग हैं, जो करने वाले हैं वो मुख्यमंत्री के सुजाती लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आंकड़े और सर्विस की जो लोग पोस्ट हैं वो आंकड़े में देख रहा हूँ।
5: ये जो पार्टियाँ टूट रही है, किसका वन नेशन वन इलेक्शन से कोई ताल्लुक है इसका?
6: सोचना तो हमें ये चाहिए कि जो प्रधानी का चुनाव नहीं करा पा रहे वो कह रहे वन इलेक्शन कराएंगे, और वन नेशन इलेक्शन इसलिए ये नारा दे रहे हैं जिससे डिलिमिटेशन वो पास कर दें, महिला आरक्षण वो ले आए, अपने हिसाब से पार्लियामेंट बना लें, अपना बहुमत रहे और विपक्ष की भूमिका कोई देश की राजनीति में न रहे।
5: कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे यूपी,
6: इंडिया गठबंधन और मजबूत करेंगे।
5: राजेंद्र गौतम को बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि कुछ एक संदेश है आपके?
6: देखिए
5: मायावती जी के लिए भी?
6: नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं पीडीए की ताकत, पीडीए का जनसमर्थन, और जो पीड़ित दुखी हैं और जो अपमानित हो रहे हैं उन्हें सबको पीडीए के अंदर ला रहा हूँ। अगर कोई भी लगता है पीड़ित दुखी अपमानित हो रहा है तो हम पीडीए के लोग उनके साथ हैं,
5: रास्ते खुले रखें, छोटी सी
6: नहीं सबके साथ। देखिए जो गठबंधन हम लोगों ने अभी अभी किया था और 2024 में जिसपे रिजल्ट इतना अच्छा आया है, तो अब उस गठबंधन को और मजबूत करें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे गठबंधन कमजोर दिखाई दे।
5: कांग्रेस को सीख दे रहे हैं?
6: नहीं, मैं किसी दल को सीख नहीं दे सकता हूँ, कांग्रेस मुझसे बहुत जानकार पार्टी है।
5: तो बातचीत शुरू हुई है, अभी होनी है?
6: नहीं, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि जो रणनीति होगी वो बता नहीं सकते।
7: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: from Pune to Ravet. Later, Ketan Agarwal and members of his family joined the journey before the group continued towards Mumbai Airport for their Bali-bound pre-wedding shoot. The driver says the group stopped at a food court for tea and snacks during the journey. It was here, he claims, that Sia returned alone to the parked vehicle, saying she had forgotten something. He alleges she removed certain belongings from the car and put them into her pocket before rejoining the others. After dropping the family at Mumbai Airport, the driver says he received a call from Ketan informing him that his passport was missing. The passport was never recovered. Without the document, Ketan was unable to board the flight and the Bali pre-wedding shoot was cancelled. Ketan's father had also alleged sabotage.
1: जब उन किसी का पासपोर्ट गुम हो गया था वो बाली जाने वाले थे एक प्री वेडिंग शूट के लिए तब भी कोई शक नहीं हुआ सर कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें
2: सर गड़बड़ का तो शक हुआ लेकिन इस बात का नहीं हुआ ना क्योंकि केतन का ही पासपोर्ट सिया ने निकाल के फाड़ के फेंक दिया वो पता अब चल रहा है तब तो ऐसा हो गया था ना कि लॉस्ट हो गया
0: He claims all passports, foreign currency, credit cards and important documents had been kept together in a single pouch inside the car. According to him, everyone received their passports at the airport except Ketan. He says Sia had returned alone to the car at the food court after claiming she had forgotten her mobile phone. Police now say their investigation suggests Sia deliberately mislaid Ketan's passport during the journey, derailing the Bali trip. The missing passport, a cancelled Bali trip, and the driver's latest claims have become crucial pieces in an investigation that continues to unravel. With Sujata Dwivedi in Pune, Bureau Report, NDTV.
3: Moving on to some other important stories that we're tracking on this edition, and this is about the ongoing probe into the Ram Temple donation theft. It has intensified now. Supreme Court will hear the matter after July 13th. As per sources, bank raised an alarm about 3 months back over the donation theft that was happening inside the temple. The outsourcing company was about to initiate the process of removing the counting staff, but trust officials came to their defense as per sources. SIT has now recorded the statement of Champat Rai and will issue notices to Anil Mishra. In addition to that, statements will be recorded from several other individuals associated with the trust. The SIT probe into the Ram Temple donation theft has uncovered major leads, from the accused being allegedly deleting WhatsApp chats to formatting mobile phones and also destroying the digital evidence while attempting to dispose of the stolen funds.
4: SIT mein khud swikar kar rahe hain ke CCTV band kar kar ke jo chadhava aaya hai उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है तो ये जो आस्था के साथ हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार सीसीटीवी ऑफ कर दें लाइट बंद कर दें कोई ना देखे तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें तो हमारे प्रभु श्री राम है प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है राम धन में अगर चोरी हुई है रख दें दोबारा तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ़ कर देंगे
5: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है
4: दोषी मैं नहीं कह सकता हूँ मैं विपक्ष में हूँ मैं दोषी नहीं कहूँगा लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जाँच कर रही है SIT आपने रिपोर्ट किसको दी है आपने रिपोर्ट किसको दी है सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है क्या SIT की भी जांच होगी क्या SIT की जांच के लिए कौन संस्था होगी फिर
5: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही वही निगरानी भी कर रहा है, चोरी

0: The driver says he received a call from Ketan informing him that his passport was missing. The passport was never recovered. Without the document, Ketan was unable to board the flight and the Bali pre-wedding shoot was cancelled. Ketan's father had also alleged sabotage.
1: जब उन किसी का पासपोर्ट गुम हो गया था, वो बाली जाने वाले थे एक प्री वेडिंग शूट के लिए, तब भी कोई शक नहीं हुआ सर कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें?
2: सर, गड़बड़ का तो शक हुआ, लेकिन इस बात का नहीं हुआ ना, क्योंकि केतन का ही पासपोर्ट सिया ने निकाल के फाड़ के फेंक दिया. वो पता अब चल रहा है, तब तो ऐसा हो गया था ना कि लॉस्ट हो गया.
0: He claims all passports, foreign currency, credit cards and important documents had been kept together in a single pouch inside the car. According to him, everyone received their passports at the airport except Ketan. He says Sia had returned alone to the car at the food court after claiming she had forgotten her mobile phone. Police now say their investigation suggests Sia deliberately mislaid Ketan's passport during the journey, derailing the Bali trip. The missing passport, a cancelled Bali trip, and the driver's latest claims have become crucial pieces in an investigation that continues to unravel. With Sujata Dwivedi in Pune, Bureau Report, NDTV.
3: Moving on to some other important stories that we're tracking on this edition, and this is about the ongoing probe into the Ram Temple donation theft. It has intensified now. Supreme Court will hear the matter after July 13th. As per sources, bank raised an alarm about 3 months back over the donation theft that was happening inside the temple. The outsourcing company was about to initiate the process of removing the counting staff, but trust officials came to their defense as per sources. SIT has now recorded the statement of Champat Rai and will issue notices to Anil Mishra. In addition to that, statements will be recorded from several other individuals associated with the trust. The SIT probe into the Ram Temple donation theft has uncovered major leads, from the accused being allegedly deleting WhatsApp chats to formatting mobile phones and also destroying the digital evidence while attempting to dispose of the stolen funds.
4: SIT mein khud swikar kar rahe hain ke CCTV band kar kar ke jo chadhava aaya hai उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है. तो ये जो आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं. मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई, हमारे धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार सीसीटीवी ऑफ कर दें, लाइट बंद कर दें, कोई ना देखे, तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें. तो हमारे प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है, राम धन में अगर चोरी हुई है, रख दें दोबारा, तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ़ कर देंगे.
5: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है? क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है?
4: दोषी मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, मैं दोषी नहीं कहूँगा. लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों. और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है? और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जाँच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है? आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है? SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या SIT की भी जांच होगी? क्या SIT की जांच के लिए कौन संस्था होगी फिर?
5: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही निगरानी भी कर रहा है, चोरी भी वही कर रहा है?
4: जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने SIT बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि ये बात खुल गई है.
6: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो. अयोध्या मथुराया काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
3: Well, the Ram Temple donation controversy has taken a fresh turn with the Ayodhya Bar Association intensifying its stand against those accused in the temple, alleged temple donation theft case. At a meeting, lawyers demanded that Champat Rai, Anil Mishra and Gopal Rai should leave Ayodhya within 3 days, warning that they would otherwise block the city. The Bar Association also resolved that no advocate would represent the accused in any legal proceedings and warned of action against lawyers who chose to take up their cases. The developments add another layer of pressure as the controversy over the alleged misuse of temple donation continues.
7: Bar ne aaj ye faisla liya hai ki SIT ka virodh kiya hai, ye jaan CBI se honi chahiye. Dusra ye kaha hai ki jila adhikari sahab ko patra denge कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपक राय, नरेंद्र अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ, क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो हैं बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है वो लोग लाए गए हैं। इसमें बड़ी चोरी हुई है, घोटाला भी बहुत है, निर्माण से लेकर के आज तक जाँच की जाए इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। नहीं करेंगे सीबीआई के लिए जहां तक जाने पर की स्थिति है, वो उसी पैसे से जो वकला साहिबान जमा करेंगे अभियुक्तों से लेकर के, उसी पैसे से प्रोसिक्यूट को प्रोसिक्यूशन की पैरवी।
8: वकील अगर मुकदमा लड़े तो?
7: मुकदमा लड़े तो वो लड़े, एप्लीकेशन देगा, उसे अनुमति दे दी जाएगी। अगर वो पैसा, इतनी बड़ी चोरी हुई इतने करोड़ों कई करोड़ों की, तो 5 लाख रुपये पर हेड तो वकीलों को वो दे ही सकता है। वो वकील ला के हमारे यहाँ वकालत खाने में जमा करेंगे, जितने नाम ले जाने चाहते हैं उतना नाम ले लें, उसी पैसे का प्रोसिक्यूशन पैर भी करेगा।
3: एंड विद दैट इट्स टाइम फॉर अस टू स्लिप इनटू अ वेरी क्विक कमर्शियल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर बिकॉज़ न्यूज़ एंड अपडेट्स कंटिन्यू राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ऑन एनडीटीवी।

0: about the alleged conspiracy. Well, according to call data records, Sia and Chetan Chaudhary last spoke on the phone exactly 34 minutes before the murder, before Chetan was pushed off the cliff. Now, during this last call, Sia provided Chetan with the final signal regarding Chetan's exact location. Also, both accused deleted nearly 3 months of chat backups and voice notes from their phones immediately after committing the crime. Police sources now claim that Sia Goyal and Chetan Chaudhary travelled together to Udaipur even before Sia's engagement to Chetan. And they're of course now probing allegations that nearly 1 crore rupees were taken from Chetan in the name of wedding preparations, which were transferred to Chetan. Now, in the latest development, what we're also learning is that both the accused Sia and Chetan have now been sent to police custody till July 3rd, an extra 5 days of police probe, because the police officials say that they need to examine new angles, new leads in the Pune murder story.
1: एडवोकेट, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि मामला पेचीदा होता जा रहा है, आज कोर्ट में पेशी है, क्या आपकी दलीलें रहेंगी?
2: नहीं नहीं, अभी वो आज का सब पुलिस का रिमांड रिपोर्ट वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स आने हैं, ये अभी उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते. वो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद फिर हमारी स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी, हम लोग ऐसे आर्ग्यू करेंगे.
1: आशुतोष श्रीवास्तव वकील अपने आप को बता रहे थे, लेकिन वैसा नहीं,
2: वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो मैं उनको जानता हूँ, लेकिन ये इसमें बहुत दिन से ये फैमिली मेरे कॉन्टैक्ट में है, इवन सिया भी मेरे कॉन्टैक्ट में है, मतलब पुलिस कस्टडी रिमांड के ड्यूरिंग कस्टडी रिमांड. हाँ, वकालतनामा हम लोग, वी आर इन प्रोसेस ऑफ फाइलिंग वकालतनामा एज सून एज शी इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट.
1: मजिस्ट्रेट कस्टडी की मांग करेंगे आप?
2: हम लोग करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे. हम लोग तो उल्टा ऐसा है, फैमिली का भी कहना ऐसा है कि आज तक सिया ने पूरी तरीके से पुलिस को कोऑपरेट किया है ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी रिमांड. इसके आगे भी अगर पुलिस को कुछ तहकीकात करनी है, जाँच करनी है, तो उसमें भी पूरी तरीके से कोऑपरेट करने वाले.
1: केतन अग्रवाल मौत मामले में आरोपी नंबर 2 यानी चेतन चौधरी को एडवोकेट शाह ने रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आज पुलिस कस्टडी खत्म हुई है और उन्हें कितने दिन की कस्टडी दी गई है, और ये पूरा मामले आज में क्या डिस्कशन हुआ?
3: आज जो कस्टडी की मांग की थी पुलिस ने, वो जो उनके रीजंस थे रिमांड रिपोर्ट में मेंशन किए हुए, वो सेम थे जो पिछले रिमांड रिपोर्ट में मैंने रिप्रेजेंट किया था 2 में, वही कॉपी पेस्ट करके वो रीज़न थे, उसमें कुछ अलग बात नहीं थी. लेकिन ये कोर्ट में सरकारी वकील ने ऐसी दलीलें दी कि हमको एक माइनर ऐसी उनकी मांग थी कि पैंट जो है एक्यूज नंबर 2 का, वो रिकवर करना था उनको, और दूसरा मोबाइल, हाँ मोबाइल के जो डेटा है, मोबाइल का CDRO, वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना था. तो हमारा आर्गुमेंट ऐसा था कि 7 दिन में फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या काम किया, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस इन द इन्वेस्टिगेशन. So they were prosecution was not able to mention the valid reason of that.
1: Time and being, sir, आप लोगों ने ये बात कही है कि just because चेतन वहाँ पर मौजूद था, इसका मतलब ये नहीं कि उसने murder किया. आप ऐसी दलीलें दे रहे हैं.

0: वो पता अब चल रहा है, तब तो ऐसा हो गया था ना कि लॉस्ट हो गया।
1: He claims all passports, foreign currency, credit cards and important documents had been kept together in a single pouch inside the car. According to him, everyone received their passports at the airport except Ketan. He says Sia had returned alone to the car at the food court after claiming she had forgotten her mobile phone. Police now say their investigation suggests Sia deliberately mislaid Ketan's passport during the journey, derailing the Bali trip. The missing passport, a cancelled Bali trip, and the driver's latest claims have become crucial pieces in an investigation that continues to unravel. With Sujata Dwivedi in Pune, Bureau Report, NDTV.
2: Moving on to some other important stories that we're tracking on this edition, and this is about the ongoing probe into the Ram Temple donation theft. It has intensified now. Supreme Court will hear the matter after July 13th. As per sources, bank raised an alarm about 3 months back over the donation theft that was happening inside the temple. The outsourcing company was about to initiate the process of removing the counting staff, but trust officials came to their defense as per sources. SIT has now recorded the statement of Champat Rai and will issue notices to Anil Mishra. In addition to that, statements will be recorded from several other individuals associated with the trust. The SIT probe into the Ram Temple donation theft has uncovered major leads, from the accused being allegedly deleting WhatsApp chats to formatting mobile phones and also destroying the digital evidence while attempting to dispose of the stolen funds.
3: SIT mein khud swikar kar rahe hain ke CCTV band kar kar ke jo chadhava aaya hai उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है। तो ये जो आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार सीसीटीवी ऑफ कर दें, लाइट बंद कर दें, कोई ना देखे, तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें। तो हमारे प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है, राम धन में अगर चोरी हुई है, रख दें दोबारा, तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ़ कर देंगे।
4: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है? क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है?
3: दोषी मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, मैं दोषी नहीं कहूँगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों। और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है? और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जाँच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है? आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है? SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या SIT की भी जांच होगी? क्या SIT की जांच के लिए कौन संस्था होगी फिर?
4: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही निगरानी भी कर रहा है, चोरी भी वही कर रहा है?
3: नहीं, जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने SIT बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि ये बात खुल गई है।
5: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
2: Well, the Ram Temple donation controversy has taken a fresh turn, with the Ayodhya Bar Association intensifying its stand against those accused in the temple, alleged temple donation theft case. At a meeting, lawyers demanded that Champat Rai, Anil Mishra and Gopal Rai should leave Ayodhya within 3 days, warning that they would otherwise block the city. The Bar Association also resolved that no advocate would represent the accused in any legal proceedings and warned of action against lawyers who chose to take up their cases. The developments add another layer of pressure as the controversy over the alleged misuse of temple donation continues.
6: Bar ne aaj ye faisla liya hai ki SIT ka virodh kiya hai, ye jaan CBI se honi chahiye. Dusra ye kaha hai ki jila adhikari sahab ko patra denge कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपक राय, नरेंद्र अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ, क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो हैं बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है वो लोग लाए गए हैं। इसमें बड़ी चोरी हुई है, घोटाला भी बहुत है, निर्माण से लेकर के आज तक जाँच की जाए इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी, नहीं करेंगे सीबीआई के लिए जहां तक जाने पर की स्थिति है, वो उसी पैसे से जो वकला साहिबान जमा करेंगे अभियुक्तों से लेकर के, उसी पैसे से प्रोसिक्यूट को प्रोसिक्यूशन की पैरवी।
7: वकील अगर मुकदमा लड़े तो?
6: मुकदमा लड़े तो वो लड़े, एप्लीकेशन देगा, उसे अनुमति दे दी जाएगी। अगर वो पैसा, इतनी बड़ी चोरी हुई इतने करोड़ों कई करोड़ों की, तो 5 लाख रुपये पर हेड तो वकीलों को वो दे ही सकता है। वो वकील ला के हमारे यहाँ वकालत खाने में जमा करेंगे, जितने नाम ले जाने चाहते उतना नाम ले लें, उसी पैसे का प्रोसिक्यूशन पैर भी करेगा।
2: एंड विद दैट इट्स टाइम फॉर अस टू स्लिप इनटू अ वेरी क्विक कमर्शियल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर बिकॉज न्यूज एंड अपडेट्स कंटिन्यू राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ऑन एनडीटीवी।
8: Five hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
9: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
10: High red, check the audio, high red, check the audio.
8: Let's do it, let's do it, let's start.
11: Breaking story, we're jumping straight into it.
8: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
12: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
8: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
13: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
12: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
8: The line of control, Shivaroor, NDTV.